0: आकाशवाणी इम्फाल माइबम दिजमनिन पाउ पजरी अहनबता मरोय पपाउ सेक्युरिटी फोर्स ना सुरसानपुर जिला दा थी भूमि की थाबक सथबदा यामलब खुसु खुलाई सिंह फागले स्टेट ऑफ होर्मोज दा जास अली द अटैक तोर पदबो भारत ना यामन कन्न यारिंग दब फुंगतो ख्रा मसुंग स्पेन फीफा वर्ल्ड कप लिसिंग ने गुतरु की फाइनल संगले सेक्युरिटी फोर्स ना सुरसानपुर जिला दा थी भूमि की थाबक सथबदा यामलब खुसु खुलाई सिंह फागले मणिपुर पुलिस कंट्रोल रूम ने थोकबा चेरोल मनाई सुरसानपुर जिला की सुरसानपुर पुलिस स्टेशन ने कोनबा के थेमजांग विलेज दा थी भूमि की थाबक सथबदा मैगजीन याउबा ए के राइफल अमा पिस्तोल अमा सिंगल बैरल नोंमे अनी कंट्री मेड पिस्तोल अनी इयर गन अमा आर पी जी की मरु अमा हैंड ग्रेनेड अमा आई ई डी मंगा पोखाइब याबा पी ई के अमा पुम्पी अहुम वायरलेस हेड मरी चार्जर अनी बुलेट प्रूफ जैकेट मरी अमदी काप्थोख्रबा नोंमई मरुगी तोंगनी निफु मरी फंगले अतोबा थौदोक अमदना सुरसानपुर पुलिस स्टेशन कोनबा गोथोल विलेज की उमंगी सरुक सिंगदा थी भूमि की थाबक सथबदा मैगजीन याउबा इंचार्ज राइफल अमा सिंगल बैरल नोंमई अमा हैंड ग्रेनेड मंगा काप्थोख्रबा नोंमई मरुगी तोंगनिंग कुनमंगा नोंमई मरु मापन बाइनोकुलर अमा 9mm की मैगजीन अनी वायरलेस हेड अहुमी हेलमेट नचिंग फंगले सेक्युरिटी फोर्स ना राइज असिद सेनखाई थुंखाई तब आईन यादव थबक तब मयोसिंग फागत लेप्री सेक्युरिटी फोर्स ना इम्फाल एस की सगोलमांग पुलिस स्टेशन कोनबा उयुम पोक ममांग लेकाई मियोय अमा मसागी मयुम दगी गरांग फारे मंगोंदगी ए के राइफल अमा मैगजीन याउबा 0.32 की पिस्तोल अमा मसुंग ए के 56 राइफल की काप यारिबा मरु कुंतरेत फंगले अतोब थौदोक अमदना इम्फाल वेस्ट की लंफेल पुलिस स्टेशन ने कोनबा लांगजिंग असोबदगी के सी पी नोंगद्रेन खोंब कांगलुप की मियोय अमा फारे महाक सिंगजमई वांगमा बाइकेबती लेकाइदगिनी महाक मियामदगी नमदुना सेल खाइबदा सेनेब मियोयनी हाइरी नेशनल हाईवे 63 इम्फाल जिरीबाम लंबीदा पोत थने याउरब गारी सामंगा मरीफुमाथोय सेक्युरिटी की अकन मंगाक सल थौरांग लोइनने इम्फाल अमद पुथोरख्रे लंबी एसिदा असोय एंगाम याउदना गारी सतोक जसिन यानबा सेक्युरिटी की कनभोय मरांग काइने थमले मणिपुरदा रथ यात्रा कांग सिंगबी की थौरम हयंग पांथोकनी मपुंगैब थौरम इम्फाल की श्री श्री गोविंद जी मंदिरदा कांग सिंगदुना हौदोकनी मदुगी तुंगदा लेकाई लेकाईदेसु कांग सिंगबी की थौरम पांथोकनी श्री श्री गोविंद जी मंदिर कांग सिंगब की थौरम की मीन उब पाउदम आकाशवाणी इम्फाल संदोकनी मीन उब पाउदम आकाशवाणी इम्फाल की कंगला संगाई चैनल अनीमक्ता पुंग अमदगी पुंग अनीमखाइ फौब संदोकनी ताबिरिब पाउ आकाशवाणी इम्फाल दगिनी अमेरिका इरान लेबाक अनिगी मरक्ता नौना उंखनब हेंगलक पमसुंग जा सिंग द अटैक सथर लिबदु येगलगा नोंसुब एशिया द ओरि लिब फिबम सिंग नई दिल्ली न कुमनी येंगसिली नई दिल्ली द पौमी सिंग द मपाल थौरम मंत्रालय की मसिन चतप मेसक रणधीर जेसवाल नहाई स्ट्रेट ऑफ होर्मुज द असोय एंगाम थोंदना जा सरप यहानगदबनि हाइबा भारत की फेरेप नहुना नखन थंगनख्रे एम टी अलभया अमसुंग एम टी मोम्बासा जहाज अली द अटैक तौरप अदु भारतना यामना हक्सिन लौय हाइब वाफम नई दिल्ली ने फोंदोख्रे जहाज अली अदुदा भारत की मिसम कुंथ्रा अमसुंग क्रू मेंबर पुन्ना निफु तरुक तोंखिबनी जहाज अली अदुदा अटैक तौरखिबदुगा मरी लेनना इरान की एम्बेसी द मथौ तौरिबा डिपुटी शिप मिशन नई दिल्ली द कौरे श्री जेसवाल नहाई
1: We had issued a statement post summoning of the deputy chief of mission of Iran. We conveyed to them our deepest concerns and that we strongly condemned what has happened. We lost precious Indian life and there are several Indian nationals who have been injured and a couple of them are also seriously injured. So we conveyed our strongest protest with the Iranian side on this particular matter that these attacks must stop at the earliest. At the same time, there should be de-escalation and the two sides should come to the negotiating table and take the path of dialogue and diplomacy so that peace and stability can be ensured in West Asia.
0: ब्रिक्स लेबाक सिंगी लेबर मसुंग एम्प्लॉयमेंट मंत्री सिंगी तरानी थुई सुब मीफम भारत युंबु वैदुन हैदराबाद नसी दगे हौरगनी बिल्डिंग फॉर रिजिलियंस इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी हाइब हिरमदा भारत युंबु वैदुन पांथोक तोरिबा नुमिनिनेगी मीफम मसिदा ब्रिक्स लेबाक सिंगी लेबर मसुंग एम्प्लॉयमेंट मंत्री सिंगमदी मकोक थोंबो ऑफिसियल केया सरु यागनी ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯂꯦꯕꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏꯃꯦꯟꯠ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯟꯁꯨꯛ ꯃꯟꯗꯥꯚꯤꯌꯥꯅ ꯁꯚꯥꯄꯇꯤ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯈꯟꯅꯒꯗꯕ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯡꯗꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯂꯩꯍꯟꯕ ꯂꯦꯕꯔ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯤꯡ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯐꯝ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯂꯩꯍꯟꯕꯅꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏꯃꯦꯟꯠ ꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯗ꯭ꯔꯥꯐ ꯗꯤꯀ꯭ꯂꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯈꯟꯅꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯕ꯭ꯔꯤꯛꯁ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯂꯣꯜ ꯏꯇꯤꯛꯀꯤ ꯊꯧꯁꯤꯜ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯍꯤꯔꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯂꯣꯜ ꯏꯇꯤꯛꯀꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯐꯒꯠꯍꯟꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯄꯟꯖꯥꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯄꯨꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯂꯣꯟꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯣꯇꯤ 297 ꯃꯃꯜ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯌꯨꯝ ꯀꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯟꯊꯨꯝꯁꯤꯡ ꯊꯨꯒꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯥꯡꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯔꯥꯖ ꯑꯗꯨꯗ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯄꯨꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 1,93 ꯐꯥꯒꯠꯂꯦ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯂꯥꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯊꯤꯡꯅꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ 9 ꯁꯨꯞꯅ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯃꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯒꯠꯄ ꯉꯝꯈꯤꯕꯅꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯗꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯔꯥꯖ꯭ꯌꯒꯤ ꯍꯛꯁꯦꯜ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯕꯜꯕꯤꯔ ꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯤꯁꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯁꯧꯒꯠꯈꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯄꯨꯁꯤꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁꯤꯡꯅꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯔꯛꯈꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ 9 ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯄꯨꯁꯤꯟ ꯇ�ꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 1,93 ꯐꯥꯒꯠꯄ ꯉꯝꯈꯤꯕꯅꯤ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯕꯜꯕꯤꯔꯅ ꯍꯥꯏ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ 4 ꯑꯁꯤꯗ ꯔꯥꯖ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯤꯔꯣꯏꯟ ꯀꯤꯂꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ 6,600 ꯐꯥꯒꯠꯄ ꯉꯝꯈꯤ ꯍꯔꯤꯌꯥꯅ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯟꯗ꯭ꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯤꯞ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟ SIR ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ 10 ꯑꯃꯒ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯦꯗ꯭ꯌꯨꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯕꯨꯠ ꯂꯦꯕꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ BLOꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ BLAꯁꯤꯡꯅ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 24 ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯨꯝ ꯌꯨꯝ ꯆꯪꯗꯨꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯅꯤ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯏꯂꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯜ ꯔꯣꯜ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 3ꯗ ꯐꯣꯡꯒꯅꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯟ FIFA World Cup 2026 ꯀꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯆꯪꯂꯦ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯑꯍꯤꯡ ꯅꯣꯡꯌꯥꯏ ꯃꯇꯨꯡ ꯄꯨꯡꯈꯥꯏ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯦꯃꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜꯗ ꯁ꯭ꯄꯦꯟꯅ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯨ ꯄꯥꯟꯖꯜ 2-0 ꯊꯣꯏꯈꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯁꯦꯃꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯃꯦꯁꯅ ꯉꯁꯤ ꯅꯣꯡꯌꯥꯏ ꯃꯇꯨꯡ ꯄꯨꯡꯈꯥꯏ ꯆꯠꯄꯗ ꯑꯥꯔꯖꯦꯟꯇꯤꯅꯥꯒ ꯏꯪꯂꯟꯗꯒ ꯑꯇꯂꯥꯟꯇ ꯁ꯭ꯇꯦꯗꯤꯌꯝꯗ ꯁꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯃꯐꯝꯒꯤꯅ ꯖꯨꯂꯥꯏ 19ꯗ ꯁꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯃꯦꯁꯅ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 10ꯗ ꯁꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯣꯡꯕ ꯄꯥꯎꯆꯦꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯥꯡꯉꯦꯝꯕꯝ ꯖꯦꯝꯁ ꯂꯩꯔꯦ ꯖꯦꯝꯁ
2: ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯗꯤꯖꯝꯅꯤ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯇ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯑꯦꯝꯕꯨꯁꯇ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯐꯥꯒꯠꯈꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯤꯡ ꯔꯣꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯊꯤꯟꯊꯒꯗꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯣꯡꯕ ꯄꯥꯎꯆꯦꯁꯤꯡꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯅꯔꯤ ꯄꯣꯛꯅꯐꯝ ꯄꯥꯎꯆꯦꯗ ꯀꯦꯕꯤꯅꯦꯠꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯅꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯐꯣꯡꯂꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯇ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯑꯦꯝꯕꯨꯁꯇ ꯆꯦꯟꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 4 ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯥꯒꯠꯄ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯨꯡ 24ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯡꯀꯨꯜ ꯅꯥꯒꯥꯂꯣꯡꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯅ ꯁꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯄꯥꯎꯆꯦꯗ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯐꯣꯡꯂꯤ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯗ ꯅꯥꯒꯥꯂꯨꯞꯁꯤꯡ ꯋꯥ ꯈꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯍꯟꯗꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃ ꯁꯉꯥꯏ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯗꯤꯁꯟꯗ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯐꯣꯡꯂꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ MLA ꯔꯥꯙꯦꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯟꯖꯟ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯉꯥꯡꯂꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯛꯂꯥꯡꯈꯨꯜꯗ ꯂꯩꯕ NHNIM ꯀꯦꯝ ꯑꯃ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯅ ꯀꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯧꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯍꯧꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡꯅ ꯍꯨꯏꯌꯦꯟ ꯂꯟꯄꯥꯎꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯃꯥꯏꯗ ꯐꯣꯡꯂꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯐꯥꯒꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯐꯣꯡꯂꯤ ꯁꯉꯥꯏ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯏꯗꯤꯁꯟꯗ ꯋꯥꯔꯜ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯗꯦ ꯄꯥꯂꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ 130,000 ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯕꯤꯚꯥꯒꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃ ꯑꯦꯡꯀꯔ ꯀꯂꯝꯗ ꯐꯣꯡꯂꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯉꯝꯈꯩꯗ ꯖꯤꯑꯣꯁ꯭ꯄꯦꯇꯦꯜ ꯃꯦꯞꯄꯤꯡ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯖꯤꯇꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯦꯜꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯂꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯐꯥꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯀ꯭ꯔꯣꯅꯤꯀꯜꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯃꯥꯏꯗ ꯐꯣꯡꯂꯤ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯗ ꯐꯣꯡꯕ ꯍꯤꯜꯁ ꯍꯣꯔꯟꯕꯤꯜ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ MLA ꯑꯅꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯛꯁ ꯄꯔꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯐꯣꯡꯂꯤ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡꯗ ꯐꯣꯡꯕ ꯒꯥꯟꯐ꯭ꯌꯨ ꯃꯦꯜꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯀꯔꯃꯆꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯅ DADR ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯟꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯐꯣꯡꯂꯤ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡ ꯇꯥꯏꯝꯁꯇ ꯅꯥꯁꯥꯒꯤ ꯄꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯑꯦꯁꯇ꯭ꯔꯣꯅꯣꯠ ꯑꯅꯤꯜ ꯃꯦꯅꯟ ꯊꯥ 9 ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁ꯭ꯄꯦꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗ ꯆꯠꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯐꯣꯡꯂꯤ ꯗꯤꯖꯝꯅꯤ
0: ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯖꯦꯝꯁ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯁꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯖꯤꯂꯥꯗ ꯊꯤꯕꯣꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯕꯗ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡ ꯐꯥꯒꯠꯂꯦ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯔꯃꯨꯁꯇ ꯖꯍꯥꯖ ꯑꯅꯤꯗ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯚꯥꯔꯠꯅ ꯌ꾥ꯝꯅ ꯀꯟꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯄꯦꯟ ꯐꯤꯐꯥ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯀꯞ 2026 ꯀꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯆꯪꯂꯦ ꯄꯥꯎ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ꯫

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर से सावधान।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

ताबिरिबा से मेघास चामा उम दस्मिक मंगारे संदुक चोरिबा आकाशवाणी फलगे एफएम संगाई चैनल दगिनी हाउसिक लंदुक चोरी गीत खुदोगे हान बदा ताबिरिसी दर्शन रावलमदी अंतरमित्रा अनिपुन सक्विनबा गीतमा

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: Where there's water, there's life. Come, let us adopt rain water harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct borewells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.
2: ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯔꯤꯖꯤꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯤꯟꯃꯥꯏ ꯑꯅꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯒꯤꯠ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫

0: ngauri nang ha ngauri haiba nungsi ba ngawi nungsi ba huni haiba do nang uruga sungga do ma le haiba
1: chumba jani bai madu chumba jani
0: ngarang su edi nang buthi ba pe awa ke computer center da su lakti ha anin koida mu hangi ude ha bazada pak ta phamra ha nang uthi adu ju thengna de ati nang ngarang kai chatte ha ba
1: khangde bai chum अच्छे तो चलते हैं। वह लोग बकान दे, बस पार्किंग में चलेगा। लेने में बस से मत तुम काकते।
0: हाँ,
1: कई लोगी बस नो। कदा ही वो दोपना बदसु, आई मत सुखांगी। बस तुम पुम्बो माई कई दे, आई तुम चले।
0: कई लम्दे नो आये बस सुखांग दबा।
1: खांगी, अदुबो, लम्दम दो, तम लगले, चिंग पात दुले, लबुक लम्हां के या पाउ दुन चलेगले। अदुबो भाई, आई, आई, चिंग पातूरे, लबुक लम्हां सिंह के या आशीबु उरु रगा, हेन हेने तुम आई वारगले भाई।
0: नमीन,
1: अदु तगी दे आई, खांग बगम ददु ना, गाड़ी तो खामले, अदु का आई मुकुम थाऊरे, आई गलक बस अमदा मुक तुंग लगा, आई लाए, हाने की पार्किंग अदु ता आई मुक तुंगले, मम्सु मम्सु लाए अशुम नहीं, अयुम तो मुहल ही भाई।
0: नौया, नौया तुमने नया पंचत सकते न? सब पता रहे बस ने इंगों द हरम। चलो बस वो आई के पुनः समीन से आओ।
1: हरम के, हरम के भाई।
0: कहीं न सीधे, ये बस वो उसी थी रो।
1: नहीं, आई ना, इसे ही मैं मसूम इबनी था।
0: नुसीब कहीं न बता कभी हुए। नुसीब कहने वाले कभी हुए हैं बदो नंशु वही किन्हीं को भाया नत्ये नंग कनारसान की हारी बनो
1: खंगे था सुम पंगी ते इबने पाओ
0: पागले अपिलो तारक कनु याद बब पीरा नंशे लम्हेले खल रनु याद बब वाखल नंशु हकमले नुसीब की वजह बा पामजरु वही कथोक लोगा खन क्रेमान दी वही जब थी
1: भाई भाई उमेश
0: नुमिया
1: ऐसे ऐसे शक्ति पाम दे नुसी दे मधु हाय बजे ऐसा होते भाई
0: नुमिन
1: अदु वो ऐबु माना वही जब थी हाय ऐश वो माना वही जब थी हाय भाई ऐश वो मामू तो वही जब थी क्यों बने
0: नुमिन
1: ऐ थी दे ऐ वही जब कल थी की दे भाई
0: से भाई तो से
1: तो माना ऐबु लाने लोग की हाय ये नुसी वो माना मारे लाने लोग की ऐ वाम ताहरे रा ऐ अमुखन मंगो तो वो हरे रो भाई
0: से कपन वो बस वो बस

0: yam basic over question ne du ma yam su khang bod yam kan ga da hai pare ne ko autism si han di aku ki kya khang ram de adu hojik ti awareness program yam to ba de gi na ba mi sing ji heng lak ba de gi ko ana ba ne su hai ning re si disorder ne hai man ko disease ne
1: hai ne hai de ba
0: adu ma si neuro developmental have the brain si na develop to ko matam si da si ki condition si tholo pa ne na effect to ise aku ne mi o sing du ne ko ni amaga amaga interaction to ba communicate to ba natra mo behavior sida akai ba lakpa al musun natra gana nakalama da na kai haitare mo khoi gi behaviors da yam restricted yam akuba lo yam hanjin hanjin na ko interest natra behavior si pangtho pa haitare suppose for example when higher ab da ko
1: hai
0: bodi mo se kano di khongdon khongdon na ga kano to chat pa massage usek to na khap pa ko adaga stereotype hi wa ngang ma da su hanjin na ma to ta ma ga hanjin hanjin na sum mani mo khong sam na ga hanjin hanjin sa na ma sum thon ba si bu ma sing se dum theng nei si symptom sing da ko mo se akhoi one to one communication hai di amaga amaga akhoi communication ja so this is the problem khra I lay aduga mit ki context se bichana bose sigi kano si su yam na wa sigi sumba sumba ka kano sing se symptoms hai the signs hai the sigi sing se le le dekhen autism ni na ching ching na bale ga doin
1: do ek ching na bala ka doin ba aduga mapung wei na khoi autism gi magi nga sai gi mayam do hai bi de do oirak pu gi maram se sidi kari ni na hai bi den do
0: मसे ओर पगी मरम से 80 टू 90% दी हेडी डिट्री ने आई विद हेडी डिट्री हाइव सेज द मपा दगी ममा दगी यावरे हाइव न तब याव न तब से जिन सी अम खतंग न तब आई थिंक क्रोमोसोम से जिन सी में आम यावरे दना अम खत द पिन पॉइंट ओ न तब जिन चा म चनी मुक्सी द अकाई वाला आगा सी जी कोस्ट ऑफ एनस कैन अखंगा इसिन हाई बीरी को अगा मसी के हाइतारे चा बदगी थक बदगी कैनो तो बदगी अबाने थोक पुदी नत्ते
1: हो चाब देगे आई दी मागे सुमा स्वेर पे दिने हैबे दिने ते जेनेटिकली मपुमेना मपुएरिने बको अदो कोलम तन लोका जगे डॉक्टर
0: फनी
1: हेलो हेलो
2: हेलो कुल अफ्टरनून मैडम
1: गुड अफ्टरनून कनाओ बिरे बोलू
2: कुल अफ्टरनून मैडम मैडम मैं वंगोले थाकम दगेले थाकम तो बिनि मैडम
1: आ तुम भी करी हम बिनिबा डॉक्टर द के हाई बी यू
2: मैडम हमी डॉक्टर ना भी कि बहुत ऑटिज्म है बोले ना ऐसी रुपा का लुपी का कि ना भी सांग अत्र का अधुगा तही मतांग जुलाई ब्राशिंग तक हम जाने का
1: हुई हुई हुई हुई डॉक्टर ना मैं इस चुना तापी रहनी ऑटिज्म ऐसी अंगांग दा नारी रहा अंदा नारी रहा है बतो अत पुनः तामी ना रसे को दे दे तुम भी
2: Thank you, madam.
0: Si tombi na hangbirai ba question si yam phaja ba question na ham ba question zuwe ba.
1: Hoi.
0: Adu mayam na khangning ese nupa da ni hen bra, nupi da ni hen bra, hai ba se. Adu hoji hoji bhaugi apne ki na khang ba di. Hai ba di nupi ama na ba da, nupa mai. Hai ba di
1: 1:4.
0: 1:4 da lai. Adu ga second part ki question du.
1: Khoi
0: masi angang. Oh, chahi gi. Chahi gi. Masi khoi na चाहे थाट्राइम पान लगी ना चाहे अन्य फार्क पर स्वाइस द कोई माना नॉर्मल वाले चलन बस या वो यंग सिंचे को अब देखिए क्या नोमा अहूम हम लाग पा मामा मपास सिंच चिंगा ना पनात रगा मपू मपू मां बेंच ना यंग सिंचे नोमा तो ये हाइप का अंग से अगर ना स्क्रीनिंग टेस्ट पेडियाट्रिशन अंगांगी डॉक्टर वेरो साइकोलॉजी क्लिनिकल साइकोलॉजी वेरो साइकेट्रिस वेरो स्क्रीनिंग टेस्ट अमा तो वदा काले अमेरिका दा दी चाहि अनि स्वरूप ट्राइम पान देने सही अनि स्वरूप से इस द स्क्रीनिंग टेस्ट सी सोइदन तो दो या दे हाइब की करम ने ओ
1: मोय के हाना सेक्शन थोरंग
0: हाइ तारे सेक्शन थोरंग कै मसी या मरु वेबा ngan na khang ho raga akoi na pi ga do intervention hai tare ne ko sin ngan ta na yam na kan na yam na intensive hai tare si pi ho raga di moy ki kon na gi phagat pagi chang improvement gi chang si
1: kela ka
0: doi ba do si han oim da su na ro have the late have the angang ni da na ki bud han ro pada ki han ro pada mayam hai na si improvement khra lai hai ya kana da adulthood ta
1: han ro kan halwe rakhan da
0: symptom jing si khra mild ro ki khra kana to ro ki ba hai tare ko
1: adu doctor na huji ki mild oi ba na pan bi ra pa kan sa ma gi ko autism gi sang se kamai ka ya thuk na ga le ye hai ba pa pan bi ra mo ha di mild oi ba pa la pan ni na sa gi mild moderate adu ka hai ba ma yan
0: autism se type 1 type 2 type 3 no jik ti latest ki da inongnoda khaidok
1: re type ahum thokna
0: type ahum thokna aha magi type 1 sina support khar da kar leba independent oina di hing ngamba aduga support khar da kar leba haibadi magi emotional gi ko opening okhan gi oiba na daga chen thung gi na daga relationship gi problem lakwa se deista na daga na haing legal gi problem lakwa se deista ke haitar support khar di da kar leba need some support haitar adiga amana substantial support second group sina support si am changba moisida abi mayai wen adu amana aroi bagi sina type 3 sina masida di support se dum lifelong chaba thakpa phi setpa adi marun su aya mana loan gi adi communication gi kenos yam develop torok traba sigi sina home su
1: wen pai pai sati wa ita kolam tang lokha chake tu ga to question mu lang se tu hello Hello, Tabiraba.
3: Good afternoon, madam.
1: Good afternoon. Hi, you can now be
3: given. I said, madam, you must continue to get up there.
1: Tabiraba, oh, you can say, Tabiraba.
3: I'm going to I'm going to go to the rainbow.
0: I'm going to go to the hospital. Poraga, Kari Lady, have to Yang Toga, the psychiatrist on the co. Jenim Stoigera, the district hospital, the Sue, Lady, Aduga, Rim Tusule, Jenim Tusule, Untang Pubiragadi, Karina, two even know have a doko, Tangan Bundo, Kangman.
1: Who's it hung be the Kiba Wahangu, Quaker, Kitan Tainaragasu, Doctor and Hidare, Sugumba lying a Masataragadi, Madugi the Mata, diagnosed the Wungam ni Hidi Nibako, Yamuaze, Doctor Nasu, Quaker's Kitan.
0: Adagi manam light adagi patterns in se se the yamna sensitive group amus yawo
1: oho
0: ad khara da na sugumba gi kan usi yamna handa ba hai bidi na ba gi sidai chung
1: thara amad ga
0: manadi ba manadi sim swan manadi the spectrum hai mun ko ASD hai ko na autism khatang hai de autism spectrum disorder hai spectrum hai bidi a kan amad gi na pol amad gi na pol amu gi kan usi cover to bhai ta
1: hello tabira bra
3: I am a father.
1: Have you, does it?
2: 아도마도 허리도 민 다보다 회의 산하래 마마나가 마마는 게 산하 부족하기나 좀이나 겁니다.
1: 좀이래 해봐도.
2: 아예 하여 그네 산하 산하 하여 하여 하여 하여다. 아다네 숨져 봐.
0: 어어어
2: 그러니까 나 저거 그 마이터가 되게 하지
0: 마시 레디오

नमस्कार, खुरम जैन मैं निंदो खुमजम रंजना आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रसारित संगाई चैनल में।

दोस्तों आज गीतमाला में पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम का पहला गीत, दिल तो पागल है फिल्म का टाइटल ट्रैक, जिसे गाया है उदित नारायण और लता मंगेशकर ने। आनंद बख्शी के बोल हैं और उत्तम सिंह का संगीत। और इस गीत को सुनना चाहते हैं खोंगजोम सापम से समरेंद्र हैकरुजम।

9863239365, नंबर फिर से 9863239365, या आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है infalgeetmala@gmail.com।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: Where there's water, there's life. Come, let us adopt rain water harvesting techniques in our homes and offices. Let us build recharge pits and shafts, fix defunct borewells, remove silt from water bodies, plant as many trees as possible. This monsoon, let us join Catch the Rain campaign.
2: दोस्तों, अगला एसएमएस आया है बाबूपारा से दीपक, संजय और सागर, लुकेर मखोंग से डब्ल्यू नांदू, सुशीला, सदानंदा, दिव्या और लक्ष्मी। ये सब सुनना चाहते हैं बाबू फिल्म का एक गीत जिसे गाया है किशोर कुमार और अलका याग्निक ने।

दोस्तों अगली फरमाइश आई है समरा मखालिकाई से बीजू सनानू तंफायाए ज्ञानपति और ज्ञानबीर गांगबम का ये सुनना चाहते हैं कभी अजनबी थे फिल्म का एक गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर ने।

दोस्तों, आज नहीं तो फिर कभी आपके फरमाइशों को हम ज़रूर सुनाने की कोशिश करेंगे। आज का ये आखिरी फरमाइश आप सुनेंगे दाग द फायर फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में, और इस गीत को सुनना चाहते हैं लैरिक थिवम लैकाई ओइनाम से सूर्यकांता ओइनाम।

दोस्तों, इसी तरह अपने फरमाइशों को हमारे कार्यक्रम आपकी फरमाइश में भेजते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
3: Sangai sinal lagi domna makhl mathel gi thorum sing leptana tabiri leptana tabio hauji gamuk pungpha masida sandok jari radio class chahu marifu su batankak ngasi gi tankak asida tham jari class 3 gi hindi subject gi ahan ba para thorum si department of education a samagra shiksha manipur gi tengbang loina na puthok chabani hauji sandok jari radio class chahu marifu su batankak

0: 신은이 많이 신나스키 빠르 되지. 상그르탄 기스케 암 케네이 가마이 토이.
1: 상그르탄 짱바니 시 상그르탄
0: 하이 상그르탄 니 문웅 싱예.
1: 짱 짱니 상그르탄 하이 마 코이나 사이세. 홍바 카리 사이세.
0: 상그르탄 하나 싱. 와이 제도 스마이나 동안 동안 바 마기 이세이기 가이타레 샤필즈 가이타레 상그르탄 고 마 동안 동안 바 플랫폼 에 맘드수 지오이나 왁도 비람 바 둥기 퓨처 다 제너레이션 다 둥기 미롤 다 이세이 샤오거드 바 나하오리 바 마야마무수 지오이나 스마 심급 비름 보세요. 심디 아무나 다가제 아무나 농아이제. 아두가 이제 상업바 이제기 거기 세기 공식지다 이제 보다래. 무슨 어워드 금바 거리 금바 베스트 싱글기 만화 판기부 코치바 농아이 기쁨이 급싱. 아무리 등글래가 수능 정비름.
1: 아두 타이너디 어워드 금디 아이세 가야할 그런 또건데 아두고 가노나 거기 농인기. 노미니 상기 베싱거기도 다데 타호
0: 페스티벌기도
1: 페스티벌기다 노미니 상기 아두가 두기 사드비게트 팡게 아두가 거기 가노나 살나수 거기 아까노 마 사히 싱기 사히 시기 싱글 베트 싱글나 이몬데스 아두기 와람저 비비
0: 샬은 셰링 싱기
1: 아두나스 비비 아두 पने आम दिलाए की बने स्थाई ना दी कंपटीशन दे आम फर्स्ट सेकंड था तारको में आम चीज़ अंगांग वही नहीं था
0: मधुमन सुई चीज़ शिक्षिक शिक्षिक प्लेटफॉर्म से इसे लाइन है तारे अरे रेडियो की अप्रूव आर्टिस्ट हम उभी की बस्ती करंब मतम दी
1: 2000 दा ओ आई ना यूं पालक पर 1990 से यूं पाले 91 दा आई से अप्रूव हो गया ना khara mana tu pacha chai ga pacha chadi am to bai tare ar main to bo radio sita ma hai bagi ama lak bai tare at ka inone ai sibo na khala ga ise jum talak bodo du kumbo do ina de pacha ga tham ja sidi jum maja la khali bo khan sida made gi di ina ma si kui ra kan da 2000 sida ni ai je main to ro kan da phone ga to ro kan da thazal la kan da interview se faina audition si yaw ra kan da di yam lai na khalak pa khanbir ewa ai
0: sakya sa gitari du ona bida
1: dune ina kan pa sa ai ga hai da ne khan bu du mi ni mi na mai hai bi rakoda ai chu pakhatra ne ko du sa ga pi du kana da chu pi do ino du ka mana lauri no gyan ta da bu adu gi khallu ba art do yam thina mi nang ta mai du ga mi
0: gi society sna isam kudi mak ta krap sanji kari gi che ching gi song lai bani na ai ko sida su du mai na lai ram ga dra na khallu ba
1: hai chu ta mak pa chu yauri ne lau bani ka hai jala ewa ko mui na log tho ga som pi ram da pa de adu ai ram ba su yai da na ko adu adu mai hai da du ga di pha cha na du ai bi hai bi ka no da
0: इसी कलर से हम लाइन जी से मतलब तक कृषि लाइन जानो जी हम नुआई थे
1: नुआई
0: थे क्यों नुआई थे हाइजेनिंग हम बने तो लाइन जी तक कृषि अतो हो जिक्षा इसे अनुभव प्रोडक्शन है बता रहे इसी के अनुभव प्रोडक्शन ना करी करी ले रही अतो आगे मतांग द खरग मुक्ता मिना सीने
1: तो ने फिर ती मतम मतम गी तो ने को फिर मतम जी दी सही आराम हो सकते याद रहे
0: सकते याद रहे
1: इस ती इस गया इतना नहा गया इतना रे को फिर का नहा सिंह की दिया आराम बस उंगा तो ने वा क्या ये रहता कोई ना सुम तू बो सही है इसने मखल मथियन ने लांग बतानिंग बा अतप बतानिंग बा मया विरोप तानिंग बा सीधे लो मिगी मिगी मिगी थमोई मि मिगी अपाम बाई दुने बा अदुना सिसु याव दो बया दे
0: मतलब
1: ट्रेन सिद
0: दो असिंग ने मामाम तने पोक्से ब मसाबो मसक माने पोंते कना आमे कुछु घर गोंगनी कना आमे खरा कना तो कुले कुसी गोइनी खरा वांगनी खरा नोइनी अदो मोई पुंग या पाम सोम त माने बने ते बा
1: माने अदो दुदाई सु इसे या नोम तंग सके ना एल्बम म पथो ए साजगे जगो ए ना
0: साजगे जगो ए ना
1: दाके के वहांग बम न मई ई बिरे अदो ग फिफ्सन लाइन कनो ई बिरे twin to bire aduga aina producer oira ka putu e adu matem tang sake ngine na pambi gedra pambi ro dai dikang dre
0: release ti to ro ber to
1: to
0: ho ta min ra si si
1: lon thok ta ban to ying ba ta mak ying ba nok phet ta tau du na lang ta khali ba lon thok ta ban na tau yang ba ta makim ba nok phet ta tau

0: हेलो हेलो,
1: गुड इवनिंग सर।
0: गुड इवनिंग।
1: हेलो,
0: हाँ ताजा रे, हैव यू
1: सर? एम सी पाई मैं लगाई देगी शॉक है तुम सुना तो ही नहीं।
0: सुना तो ही तरह नुकसानी करा मिशेल ताबी के नहीं तब ना खुम्बी रे कर मिशेल ताबी के नहीं हैव यू
1: तो ये जो कि थमोई फिल्म की ना एक यंगोई ना सक पा इसे ही दो
0: सही की सही हो हैव यू ตัวจิตปาปุนจงจำได้ใช่เรื่องแบบใช่ด้วยนะตาเจอร์กิซ่าโอ้ยฮาร์ดไทยบุ้งเชมมาพูดสิกว่าชนะถอยตาบีดระเบ้ามาเลยฮาร์ดไทยบุ้งเชมมาพูดสิคันบีระเป็นอะไรตรอเอเคยังคุยเอเคยังกุยกี้โอ้ยโอ้ยใช่ตามินดาร์สิคุณดูตัวเจอร์สรุปยาบีระพัฒนาเกิดสิ

0: हेलो, गुड इवनिंग मणिपुर नि कनाव बिरे बनो।
1: हेलो
0: ताजा रे तापियु
1: ओ खोंमन दगी छना दी कवे सार
0: होय खोंमन जोन क्या दी उबिरे बनो
1: जोन 4 इस नि
0: यम नुंगाई जे तराम नोक्से दी ओ करे मसे तबी गनी
1: दो नो फिलंग मिने सार
0: हम्म
1: निगमम लुपचंद्र न सखपा दिजेन तकुमार शर्मना
0: खैरेंगबा
1: खैरांगबा हादे इमोम नुसीबी
0: हादे इमोम नुसीबी दो
1: तमु पंगन थरे फारो पलेंग दिलमन छिंग छिंग उ पंथौ खोंगुली ओ हाय बिसै दन ताजगे सास
0: होय होय याम फजना खंगबी गरे इसै जि याम फजना नियम चुम न हाबी रखरे ओंथोंना नुहाय जगरे खैदि सैदेंग ब सैसक पजि नियम चुम न हाबी रख पजि याम नुहाय जै हाय जब तारे इसै गि अहुब पलेंग हाबी रख पक्वा ओंथोंना नुहाय जगरे इसै तामिन रसिरा थकचरी सरु या बिरक्प मतुंग दसु टेलीफोन फंगबो ओइबियु इसै खुदोल तौजरे तामिन रसी

0: हेलो, गुड इवनिंग मणिपुर
1: हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सर।
0: तकपियू मिंग तकपियू ताजर है। हेलो
1: सर, ये शो में कहाँ कहाँ दिमाग में बिम्बिम नहीं सर।
0: बिम्बिम कर बेचे ही ताबी गनी
1: सर, कोई बेचने ही वो रोक लंदगी मंदाकी नहीं तकिया लंबन उसको

मुख्यमंत्री युमनाम ख्यामचानंग से इंफाल वेस्ट की मनुंग चनल कांतो सावल चतुना मफमरुद हंदक मई चाकपद युम तरुक नौन सेंगुट सागलिबसिंग यंगसिनक्रे खोंचत अदुद मुख्यमंत्री ने मफम अदुगी मियोय सिंगसु उनदुन वारी सानकी उनब अदुद मुख्यमंत्री ने मफम अदुगी मियामना अमग अमग मतेंग पांगनदुना शांति लेबे लमदम अम पुरक्न बहनबद मतेंग पांगबिनब तक्षिनकी मफम दुद वांगांगबद मुख्यमंत्री ने हाय मफम अदुद खुंदामिनरिब पुरुक खुदिमकना मसिन मनाव इबगी वाखलोन हेन फाहुंदुना राज्य सिबु शांति अमदि सखतपगी माइकेर पुरक्न बहनबद मतेंग पांगबियु मणिपुर महुसा की फ्यूम हंजुल हननाब नेशनल हाईवे कानून खुदिमक अयद अपन लेते सतोकसिन तब यहाब सरकार कन होनरी है मुख्यमंत्री ने फोंदोखी मफम अदनासल की थब हेन फगत हननाब याउना वाफम क्या तक्षिब मेमोरेंडम मुख्यमंत्री पीसनकी इम्फाल अकुमेन ए आई की फाउंडर थियाम अकुवान राज्यपाल अजय कुमार भला इम्फाल की लोक भवन उनक्रे उनब श्री अकुभान ए आई डी युफम पुथोप इनसाइट हैथों मिट उद्रब उब की चांग वाटलब मूसी उपनब स्मार्ट क्लास राज्यपाल यहाँ स्मार्ट क्लास उपलब्धि नमथोलब लाइक मयक अत पोलम सिंह मसक खादपद हेन खुद चाहली अनुद मणिपुरी यौना भारत की लोल कुनीथोय येंब याय नमित मापनी चुम चथगदब रथ जत्रा कांग सिंगमगी थोरम हयेंगदगी मणिपुर हौरगनी मफुंगैब थोरम इम्फाल गी श्री श्री गोविंदजी मंदिर श्री श्री विजय गोविंदजी अमसुंग इस्कोन मणि मंदिर दरा कांग सिंगमगी थोरम सिंग पांगथोकनी मदुगी तुंगद राइजगी तोगान तोगान मफम सिंगद कांग सिंगमगी थोरम सिंग पांगथोकनगनी रथ जत्रा कांग सिंगमगी थोरम गो मरी लेनना लुसिंगब कयान याफ पाउजेल पिरकली मुख्यमंत्री युमनाम ख्यामचान उप मुख्यमंत्री लोसी डिखो मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष थोक्सुम सैतव्रता मयंग इम्फाल केन्द्र की एम एल ए के रोबिंद्रोना रथ जत्राग मरी लेनना याफ पाउजेल सिंह पिरकली अनौब लांगों की वोट है वाखलोंद मयोल सिंधु चथरीब कैंपेन की सोरकम होने इम्फाल ईस्ट जिला की कांहु सिंगजिन खुलेन कक्षिंग जिला की पलेंद मियांग वाखल तामिनब की थोरम सिंह पांगथोख्रे थोरम सिंह वांगांग मिखल नियम चुन पांगथोक्तुना अफब मीरब सिंह खननब वाफम क्या फोंदोक्नाकी मतम सांगलब मणिपुर की वाथोक थाजब वाटप की थोंग थोलीब से कोहनबिनब वर्ल्ड मिटई काउंसिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाकत चेरोल पीसनक्रे मणिपुर शांति पुरक्नब अचुम वायल फंगननब मियाम मरक्त थाजनब की सांग हेंगत हननब मतिक चाब थबक सिंग लौखत्पिनब चेरोल अदुद तक्षिल्ली मणिपुर स्टेट कमीशन फॉर वुमेन ब्राइटवे इरका टेनोपोल डिस्ट्रिक पुनः सिंधुना हक्सांग फब पुनसी महिंग अमसुंग नुपी सिंगदा अफब चिंजाक सिंह चांग चान पीजबगी मतांगदा नौमगी ओइब खांगनबगी थौरम मंगासी टेनोपोल जिला की खांगसिम विलेज फांगथोक्रे थौरम सरुक यारदुना कमीशन की चेयरपर्सन टी एच तिनिंगफम मोनसांग हाय युमद थों थाकपगी थबक तौबद चौरब थौदांग लौरिब नुपी सिंह करम करम मखल की हक्सांग कानगदब अंजांग सिंह थोंगदगी हैबदु खांगनबगी पानमद थौरम से पांगथोकपनी थरमद कमीशन के तई मेम्बर सिंह सरुक याखी आई सी ए आर कृषि विज्ञान केंद्र तमेंगलोंग सिंधुना आई सी ए आर सी एस आर कनक्लेव लिसिंगनी कुंतरुक पान इंडिया रियल टाइम फीडबैक लूफ ngasi पांगथोक्रे थरमद किसान सराती डिजिटल प्लेटफॉर्म की खुटांग तमेंगलोंग अमसुंग नोने जिला की लौमी सिंह सरुक याखी असम राइफल्स सिंधुना टेक्नोपोल जिला की मोरेद वेटरन आउटरीच एंड वेलफेयर मेला पांगथोक्रे मदुद पुन्ना मियोय हुंफुतरा मंगारोम सरुक याखी अमरोमद असम राइफल्स सिंधुना ngarang कक्षिंग इम्फाल वेस्ट जिला की तोान तोान वफमसिंद यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम सिंह पांगथोक्रे हरी केंद्र के मपान थोरम मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बेल्जियम की ब्रुसेल्स यूरोपियन यूनियन कमिश्नर उनदुना वारी सानक्रे पाउ लोजरे

ताइबंग मालंग पान सिद लाइबा लेंली पालीबा पुमनमक हौरकफम सातफम तुंगनाफम लोयनमक लेरी नुमित के अकोयबद कोयदुना लाइबा ग्रह पुमनमक सौर जगतना मखोयगी मयुम ओयरी पृथ्वीद मालेमद लाइबा लेंली पालीबा अचचत्ता जीबा उपाल वापाल पुमनमक मालेम लैमा पृथ्वीना पुमनमक मुक युमनी लौनरी पुनमकना नुंसीना मालेम इमा हाइना मिंगौनरी पुन्ना येंगबदा पृथ्वी अदुदगी मथंग मथंग महादेश देश तोंगान तोंगान खाइदोख्रिबा लैबाक्सिंग असुमना फिजेट साजत चिनजाक सक्कुचु खेनब कयागी मागी मागी पोंनाफम एखैगिसु एखैगि पोंनाफम इमा मणिपुर

माधवी फिल्म सिदगी इसई से ताबीखीबगलना तंकसी मणिपुरी फिल्म इसई सन्दोचरी ताबीरीबसे आकाशवाणी इम्फाल की मेगाहर्ट्ज़ सामगहुम दशमी मंगा सन्दोचरीब एफ एम संगाई चैनल दगी हजी लांथोचरी तोान तोान गीत सिंह अहम खुदोल लखचरी मोहम्मद रफी की खोजेल गीत अमा

मोहरा फिल्म से आपने ये गीत सुना, साधना सरगम और पंकज उदास की आवाज में इंडीवर का लिखा ये गीत और विजू शाह के संगीत से सजा ये गीत। आप सभी का मैं रितिका स्वागत करती हूँ कार्यक्रम हर श्रृंगार में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कहते हैं ना कि किसी इंसान की सबसे बड़ी खूबसूरती उसके सादेपन में होती है। जब दिल साफ हो तो ना तो गहनों की जरूरत होती है और ना ही किसी बनावट की, है ना। और यही सादगी हमने इस गीत के माध्यम से जानी सुनी और बहुत ही इसका हमने लुत्फ भी उठाया। और अब बारी है एक ऐसे गीत की जिसने मोहब्बत की मासूमियत को बेहद खूबसूरती से सुरों में पिरोया है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

1994 में आई फिल्म कभी हां कभी ना से आपने ये गीत सुना जतिन ललित के संगीत से सजा कुमार सानू की आवाज में और मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत कभी-कभी आपने भी ये एहसास किया होगा कि जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल वही होते हैं जब हमें दुनिया की कोई खबर नहीं होती है ना बस अपनेपन का एहसास और दिल की धड़कनों की आवाज साथ होती है और अब बारी उस गीत की जिसमें मिलने की चाहत इंतजार की बेचैनी और प्यार की मासूम खुशबू एक साथ महसूस की जाती है

और हमारा भी आपसे मिलने को दिल हमेशा करता है। फूल और कांटे फिल्म से आपने ये गीत सुना कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में, समीर का लिखा ये गीत और संगीत से सजाया नदीम श्रवण ने।

तो दोस्तों हर श्रृंगार में आज बस इतना ही। 11:10 पर मार्केट मंत्रा आप सुनेंगे और अब से थोड़ी ही देर में समय रहेगा समाचार का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश की सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण परिस्थिति को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP OSAT इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है अभी 10

0: कैबिनेट लग चुके हैं उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में उद्योग को शुरू करने और स्थापित करने पर ध्यान दिया गया था। दूसरे चरण के अंतर्गत हमारी सभी रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए जरूरी चिप भारत में डिजाइन की जाएंगी। मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को मंजूरी दी है। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा, साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते के लागू होने की सराहना की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि मताधिकार का प्रयोग करके लोग लोकतंत्र में अपनी आस्था का प्रमाण देते हैं। उन्होंने निर्वाचित प्रतिनिधियों से ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ सेवा करके इस विश्वास को कायम रखने का आह्वान किया। राजस्थान विधानसभा की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर जयपुर में एक सम्मेलन में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि राज्य विधानसभाएं भारतीय लोकतंत्र की धड़कन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जिंद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर को चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम MCD और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। इस पहल का उद्देश्य शहर की डेयरियों से निकलने वाले कचरे को यमुना नदी में बहने से रोकना है। इसकी बजाय इस कचरे को बायोगैस और खाद में बदला जाएगा। NDDB मॉडल के तहत डेयरियों और गौशालाओं से गोबर को सीधे गैस और खाद संयंत्र तक पहुंचाया जाएगा। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन DIBD और पंजाब नेशनल बैंक PNB ने समावेशी बैंकिंग तथा नागरिक केंद्रित वित्तीय सेवाओं के लिए बहुभाषीय AI समाधानों को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करने के वास्ते एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे अटलांटा में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इस मैच के विजेता का मुकाबला फाइनल में स्पेन से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. The Union Cabinet today approved the Semicon 2.0 with a budgetary outlay of 1,27,500 crore rupees to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw announced about the cabinet decisions while briefing media in New Delhi today. Mr. Vaishnaw said, building on the momentum of Semicon 1.0, the scheme aims to further the government's commitment to putting India on the global semiconductor map.
0: Semicon 2.0.
3: Semicon 2 is built around six key pillars. The first pillar focuses on chip design. The second places major emphasis on semiconductor machinery and materials. The third aims to establish many new semiconductor fabrication units. The scheme also includes provisions to further strengthen the ATMP and OSAT industry, which has already gained momentum in India with 10 units already established.
2: The minister said the cabinet also cleared the mobile phone manufacturing scheme with a budgetary outlay of 62,500 crore rupees. The government also approved two elevated corridor projects at Varanasi in Uttar Pradesh to improve road connectivity and reduce congestion and travel time. The projects include a six-lane greenfield elevated corridor covering over 46 km between National Highway 19 and Varanasi Ring Road in Uttar Pradesh on hybrid annuity model, improving urban mobility. The Comprehensive Economic and Trade Agreement CETA between India and the United Kingdom became operational today. Simultaneously, the agreement on social security referred to as the Double Contribution Convention also became effective, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants zero duty access to 99% of Indian exports in the UK market, including those in textiles, leather, engineering, food processing, pharmaceuticals and MSME. On the first day of CETA, Indian goods worth $140 million were exported to the United Kingdom. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today expressed confidence that the India-EU Trade and Technology Council meeting will take forward the strong momentum of the partnership enabled by the India-EU FTA, Security and Defence Partnership and the Mobility Framework. The minister made this statement to the press after the third India-EU Trade and Technology Council meeting in Brussels. He said that India and the EU have a natural affinity. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal described the India-EU FTA as fair, equitable and balanced, which is a win-win agreement for every sector in both the nations. Highlighting the discussions during the meeting, he said that they shared a vision for an innovation-driven, trusted and future-ready growth partnership. The Election Commission today extended the schedule for the ongoing Special Intensive Revision SIR of electoral rolls in Punjab, Karnataka, Telangana and Delhi. In Delhi and Karnataka, house-to-house visits by booth-level officers, that is BLOs, which were scheduled till the 29th of July, will now continue till the 8th of August. In Punjab and Telangana, the house-to-house visits will continue till the 3rd of August. Union Health Secretary Punya Salila Srivastava today launched the Intermediate Field Epidemiology Training Program, IFETP, in New Delhi. It is an initiative through National Center for Disease Control to build a highly skilled field epidemiology workforce by training 250 state and district surveillance officers through 14 premier medical and public health institutions. In a social media post, the Health Ministry informed that the program will enhance capacities in disease surveillance, outbreak investigation, public health data analysis and surveillance system evaluation, further strengthening India's public health emergency preparedness and response. Three Indian women boxers won gold medals while 10 others claimed silver medals at the Asian Under-19 and Under-23 championships in Jakarta today. In the Under-19 category, Chandrika Pujari won the gold medal in the 51kg weight class while Prachi claimed gold in the 57kg category. Gunjan in 45-48kg, Joyshi in 54kg, Chahat in 60kg, Anshika in 75kg, Megha Shyokand in 80kg and Prachi Tokas in plus 81kg added silver medals to India's tally. In the Under-23 division, Nisha won the gold medal in the 54kg weight class, Neetika Chand in 60kg, Kajal in 65, Muskan in 75 and Priyanka in plus 80kg won silver medals. And that is the end of this news bulletin.
4: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. I am Gaurav Dhawan Lal with my co-anchor Prachi Priya.
1: नमस्कार. कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है. श्रोताओं, आज चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ उदयन रे. महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: धन्यवाद.
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां.
0: थैंक यू प्रिया एंड उदयन, वंस अगेन वेलकम टू द प्रोग्राम. A quick look at the headlines. Benchmark domestic indices end on positive note. Sensex gains 130 points. Nifty settles at 24,079. India-UK comprehensive economic and trade agreement comes into effect. And Cabinet approves Semicon 2.0 to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Also gives nod to national investment policy for Urea 2026.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 130 अंक बढ़ा. निफ्टी 24,079 पर बंद हुआ. भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक व्यापार समझौता और आर्थिक समझौता आज से लागू हो गया है. और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए सेमिकॉन 2.0 तथा यूरिया 2026 के लिए नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को मंजूरी दी.
0: Listeners, before we move further into the program, we'd like to share with you that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: Aur shrotaon, ab samay aa gaya hai ki hum jane ki aaj din ke antaral mein प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों ने कैसा व्यवहार किया. प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 130 अंक यानी लगभग 0.2% बढ़कर 77,185 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 26 अंक यानी 0.1% बढ़कर 24,079 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत शेयर बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक में लगभग 0.3% और स्मॉल कैप 100 सूचकांक में लगभग 0.7% की बढ़त देखी गई. इससे पहले बाजार बढ़त के साथ खुले और सत्र के पहले हिस्से में तेजी रही. वहीं दूसरी ओर दूसरे हिस्से में मुनाफा वसूली के कारण दोनों सूचकांकों ने अपनी शुरुआती बढ़त गंवा दी. हालांकि बाजार कुछ समय के लिए घाटे में आ गए थे, लेकिन सूचकांकों ने जल्दी ही अपना रुख बदला और बचे हुए सत्र के दौरान उतार चढ़ाव के साथ कारोबार करते रहे.
0: Benchmark domestic equity indices ended in the positive zone today. The Sensex rose 130 points, almost 0.2% up, to close at 77,185. The Nifty added 26 points or 0.1% to settle at 24,079. In the broader market on the National Stock Exchange, mid-cap 100 gained nearly 0.3% and the small-cap 100 index jumped almost 0.7%. Earlier markets opened on a positive note and traded higher during the first half of the session. However, both indices gave up their early gains in the latter half amid profit booking. Although the indices slipped briefly into negative territory, they soon recovered and traded in a choppy range for the remainder of the session.
1: Sensex में शामिल 30 में से 17 कंपनियों के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई. सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में Eternal 3% से अधिक, Ultratech Cement 2.8% और SBI के शेयरों में 1.5% की बढ़ोतरी हुई. वहीं खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में Power Grid और Larsen & Toubro में लगभग 1.7% और अधिक तथा Tata Steel के शेयरों में 1.5% से अधिक की गिरावट आई.
0: In sectoral indices on the BSE, 19 out of 25 sectors ended in the positive zone. Among the top gainers, capital goods jumped 1.3%, PSU banks rose over 0.9%, and hospitals as well as consumer durables added more than 0.7%. In contrast, utilities dropped nearly 1.3%, metal fell 1%, and IT lost over 0.6%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,207 advanced 2,081 companies declined and 154 remained unchanged.
1: और अब जान लेते हैं श्रोताओं रुपए का हाल. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 6 पैसे कमजोर होकर 96 रुपए और 26 पैसे पर बंद हुआ. उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 101.97 पर कारोबार कर रहा था. उदयन, कल हमने देखा कि बाजार में गिरावट आई और आज हमने देखा कि बाजार में एक हल्का सा हम कह सकते हैं कि हरे दायरे में कारोबार करते हुए

0: So that it's like a T20 cricket match, you know, you have that, keep that average, you'll even a big target you can hit. Right. So I think that's roughly the idea, but I really like the question you asked.
1: Right, wonderful. So two words I'm picking up. One is steady. I think we cannot, two areas we can't expect steady is market volatility and in our brain, in our head. I mean, we look at the market every day. But you're saying steady is the word. These are the two areas. One is out of your control. The other one in your head. How often do you see your portfolio? How have you actually parosoed the thali? I love the use of that analogy. Yeah. Because also, there are some dishes in that you may not appreciate the taste now, mm-hmm. but they might be good for your health.
0: Well, absolutely. And that's basically the idea. When you have a balance, so the idea is not, if you have excess of one thing and nothing of others, then you're not giving it nutrition. So every one of them, you're making sure that there's one a superstar that you're betting on, or somebody who's coming and delivering that 8, 9, 10, whatever, 11%, helping you get that overall return. So a lot of people, you know, I think it's a very good question now that I'm thinking of it. So a lot of people look for that silver bullet, Ramban, you know, you'll get that stock and it'll make you rich. That's a bad idea. You need a combination. You know what combination does? It, you know, you have these voltage fluctuations. So what it does, when you have a good combination, you get a very steady voltage. So it's like a voltage stabilizer. And what you need, if you see, you can do the math. 1 year, if you're getting 15 and the next year zero, and some guy who's just doing 10 every year, you will find that the end of, say, 5-10 years, this guy who's doing steady, he's becoming the richer. The tortoise is winning and the hare is, you know, behind.
1: Right. I mean, the hair is like nowhere.
0: Yeah.
1: Right, absolutely. We have another story. This is about an IPO, the initial public offering IPO for SBI Funds Management, opened for subscription yesterday. The company has set the IPO price band at 545 rupees to 574 rupees per equity share. The public issue is entirely an offer for sale. The IPO will close tomorrow.
2: और अब रुख करते हैं एशिया के बाजार की तरफ अधिकांश एशियाई शेयर सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 6.2% से अधिक ताइवान का ताइएक्स 2% जापान का निकेई 1.5% हांगकांग का हैंगसैंग लगभग 1.5% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स लगभग 1.2% बढ़ा वहीं चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.3% नीचे आया
1: मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट सीटा between India and the United Kingdom came into force today. The landmark deal grants Indian exports zero duty access to 99% of tariff lines in the UK market. Prime Minister Narendra Modi said that the CETA and the agreement on social security is a significant moment in the partnership between India and the United Kingdom. Mr. Modi made these remarks while sharing a social media post of Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal. The Prime Minister added that the CETA will give fresh momentum to India's farmers, entrepreneurs and MSMEs, along with several vibrant sectors gaining stronger access to the UK market. Talking to Akashvani News, High Commissioner of the UK to India, Lindy Cameron said that this agreement is a great deal for both sides.
3: It's just wonderful to be here today on the 15th of July, celebrating the deal going into force, making it faster, cheaper, easier to do business between the UK and India. I mean, after so much hard work on both sides, and huge credit to the Ministry of Commerce and Industry here, who've done a brilliant job. My team too have done an amazing job. It's a great deal for both sides. We have very complementary economies.
1: Speaking to Akashvani, Global Trade Research Initiative founder Ajay Srivastava highlighted the key sectors benefiting from the deal.
4: The deal aims to increase trade between the two nations from $66 billion to a massive $100 billion in the next few years. So what's in it for India? Exports of Indian textiles, garments, footwear, cars and seafood gets a boost from tariff cuts by the UK government. Plus, a new tax rule ensures that Indian professionals working temporarily in the UK won't get double taxed on the social security. On the other side, Indian consumers can look forward to cheaper prices on British industrial goods, silver, luxury cars.
1: While speaking to our news correspondent, Executive Director of Indian Chamber of Food and Agriculture, Sanjay Sethi, said that this agreement will give a boost to the agriculture sector.
5: इससे एग्रीकल्चर को बहुत विशेष लाभ है क्योंकि ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जैसे कि राइस चाय स्पाइसेस मैरिन प्रोडक्ट इसके अलावा फ्रूट्स वेजिटेबल्स और जो प्रोसेस फूड्स हैं इन सब उद्योगों पे इसका डायरेक्ट इंपैक्ट होने वाला है इसके साथ साथ जो ग्रोथ है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में इसमें बहुत जबरदस्त ग्रोथ आने वाली है क्योंकि यूके में प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट किया जाता है बड़ी भारी तादाद में और इंडिया में सब तरह के प्रोसेस प्रोडक्ट्स बन सकते हैं और इंडिया में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स को अब अपनी कमर कसनी होगी FSSAI ने फूड की सेफ्टी के लिए बड़े अच्छे कदम उठा रहे हैं और उसका इंपैक्ट एक्सपोर्ट से तुरंत देखने को मिलेगा इस एग्रीमेंट की सक्सेस अल्टीमेटली इस बात पर डिपेंड करेगी कि हमारे सब स्टेक होल्डर्स चाहे वो फार्मर्स हैं चाहे वो मंडियों के व्यापारी हैं या फूड प्रोसेसिंग कंपनीज हैं ये सब मिलके इस अपॉर्चुनिटी को एक नई लंबे समय तक ग्रो होने वाली अपॉर्चुनिटी में तब्दील करें जिससे कि रूरल प्रोस्पेरिटी भी हमारी बढ़े और एक सस्टेनेबल लंबे समय तक ग्रोथ हमको मिले
1: Talking to Akashvani News, Executive Director of the Gem and Jewelry Export Promotion Council, Sabyasachi Ray, said that the gems and jewelry sector will be immensely benefited by this agreement.
6: See, gem and jewelry sector is a very large sector from India. We are employing more than 5 million people across the country. Though our exports is $30 billion, but it reaches every corner of the country. All types of jewelry manufacture, whether you talk about Western jewelry, ethnic kind of jewelry, handmade jewelry. And we are one of the largest exporter of diamonds in the world. Like 14 out of 15 diamond set in jewelry anywhere across the world is manufactured in India. And also emerald, we are again the largest manufacturer of emeralds in the world. Tanzanite, we are the sole manufacturer of cut and polish tanzanite across the world. So we are having more than 200 clusters of manufacturing. All these will be benefited with this agreement.
2: और अन्य खबरों में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकियों को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकॉन 2.0 को भी मंजूरी दी है नई दिल्ली में हुए एक प्रेसवार्ता में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सेमीकॉन 1.0 की सफलता को आगे बढ़ाते हुए इस योजना का उद्देश्य भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर मानचित्र पर लाने की सरकार की प्रतिबद्धता को और आगे बढ़ाना है उन्होंने बताया कि ये योजना आर्थिक विकास में मदद करेगी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करेगी और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तकनीकी नेतृत्व स्थापित करेगी मंत्रिमंडल ने मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति दी है श्री वैष्णव ने कहा कि ये योजना अगले 5 वर्षों के लिए लागू की जाएगी उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत देश में मोबाइल फोन बनाने के लिए पात्र बिक्री पर 2.25% से 5% तक की प्रोत्साहन सहायता दी जाएगी
7: आज जो कैबिनेट ने अप्रूव किया है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम उसका आउटले 62,500 करोड़ रुपीस का है 5 इयर्स का ड्यूरेशन है डोमेस्टिक सोर्सिंग के लिए बहुत सारे इंसेंटिव्स रखे गए हैं क्योंकि अब इकोसिस्टम बन गया है अब बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो भारत से एक्सपोर्ट होने लगे हैं ऑलरेडी इसमें करीब 39 लाख करोड़ रुपीस का क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन होगा और 60,000 डायरेक्ट जॉब्स नए क्रिएट होंगे
2: मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए यूरिया 2026 यानी NIPU 2026 के लिए राष्ट्रीय निवेश नीति को भी मंजूरी दी इस नीति का उद्देश्य देश में गैस आधारित यूरिया बनाने वाली इकाइयां लगाने के लिए यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को बढ़ावा देना है ताकि आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल किया जा सके नई नीति में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए स्थिर और परिवर्तनशील लागत को अलग-अलग करने के साथ कई और महत्वपूर्ण बदलाव शामिल हैं उद्यन सेमीकॉन 2.0 उद्देश्य जो लेकर के भारत सरकार चल रही है वो वैश्विक सेमीकंडक्टर को मानचित्र पर लाने की एक परिकल्पना है ये किस तरीके से फलीभूत होते हुए आप देखते हैं
0: देखिए अब जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो जो चिप्स हैं वो हम हर चीज तकरीबन हर चीज में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें जो हमारी जो कैपेबिलिटी है जो सक्षमता है वो सबसे ज्यादा एडवांस्ड चिप्स बनाने में आप सीधा तो नहीं जा सकते तो आपको धीरे धीरे वो जो गैप है कटिंग एज और आपके बीच में उसको कम करना है तो आपने देखा होगा कि इन सरकार ने और दूसरे उद्योगों ने कंपनियों ने एक प्लान बना रखा कि कैसे वो गैप को धीरे धीरे करके कम करना है, तो ये उसका ही हिस्सा है जिसमें वो आप आगे बढ़ रहे हैं और आप वहां तक पहुंचना चाहते हैं, सबसे ज्यादा सूक्ष्म जो चिप्स है वहां तक आप पहुंचना चाहते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है कि जो हमारे जो कटिंग एज और हमारे बीच में इतना बड़ा फासला जो है वो कम हो जाए, क्योंकि हर चीज के लिए आपको वेरी एडवांस चिप्स की जरूरत नहीं पड़ती, कई जगह में रेगुलर यूज के जो है वहां पे आप उसके लिए भी चाहिए होता है, उसके लिए भी आप अगर इंपोर्ट करें वहां पे रिस्ट्रिक्शन हो जाए, तो जो सप्लाई चेन रेजिलियंस के बारे में बात हो रही है तो वो आप देश में ही बने और वो आप विश्व के लिए बनाए, तो उसी का ही एक हिस्सा है, वो इसी स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा ही है।
2: जी आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि वित्त मंत्रालय ने भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड से क्रिप्टो को विनियमित करने पर विचार करने को कहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को पूरी तरह फर्जी बताया है। यूनिट ने स्पष्ट किया कि भारत में क्रिप्टो को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है और वित्त मंत्रालय की ओर से ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। पीआईबी ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी जानकारी की पुष्टि के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें।
1: Global crude oil prices extended gains today amid escalating tension in West Asia. Brent crude was trading over 0.3% up at $85.03 per barrel. West Texas intermediate crude was trading 0.4% up at $79.66 per barrel when reports last came in. Brief comment, Udayan, on the rate of rise of oil.
0: Obviously, we don't like this. We import most of our oil from abroad. But I think from the market's point of view, the figure is 90. As long as it remains below 90, I think the markets and the general sentiment will be able to handle it. But the every time it's going to increase, you're going to see the first place is you're going to see an impact would be on the value of the rupee. That's where it starts. Then it will start. It impacts your equity and other forex inflows. Mm-hmm. So, what we need to, if there is somebody who's watching this, what we need to hope for is that it doesn't cross the figure of 90, because it's got fiscal implications and other implications as well. So we would want it to be lower it gets, the better it is. But we don't stay in an ideal world, which we have realized. So, we hope it doesn't go up too
1: much. Right, fingers crossed, yeah, absolutely. Yeah, yeah. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 0.3% down at 1,42,560 rupees per 10 grams, while silver was trading over 0.6% down at 2,22,200 rupees per kilogram a short while ago.
2: Multi-commodity exchange mein agast anubandh wala sona mamuli badhat ke saath 1,42,328 rupees prati 10 gram par karobar kar raha tha, jabki sitambar anubandh wali chandi 0.3% लुढ़ककर 2,22,488 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। उद्यन जाते जाते, क्योंकि समय की बाध्यता है इसलिए एक संक्षिप्त टिप्पणी में सोने और चांदी के भाव पर चाहूंगी।
0: देखिए, ये सोने की पॉपुलैरिटी बरकरार ही रही है जब तक आपके ये दो जो संघर्ष चल रहे हैं उसका एक इम्पैक्ट आपके स्टॉक फाइनेंशियल एसेट्स पे होता रहता है, तो वो बट ये ख्याल रहे कि आप उसमें एक्सेस ना जाए, अगर 100 रुपए निवेश करें 10 रुपए से ज्यादा ना सोने में हो और वहीं पे बरकरार रखें, तो अगर और ये नहीं कि आपको फिजिकल गोल्ड खरीदना है, बाकी ETFs वगैरह में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद उदयन कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे तमाम सवालों के तमाम जवाब देने के लिए।
0: धन्यवाद।
1: Once again, thank you, Udayan. And now, quick look at the headlines once again. Benchmark domestic indices end on positive note. Sensex gains 130 points. Nifty settles at 24,079. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement comes into effect. And Cabinet approves Semicon 2.0 to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Also gives nod to national investment policy for Urea 2026. That's all for today. Namaskar.
8: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। एक बार फिर मैं रितिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

1958 में आई फिल्म हावड़ा ब्रिज से आपने ये गीत सुना, ओपी नैयर का संगीत, कमर जलालाबादी का लिखा ये गीत। और आवाज आशा भोसले की।

तो दोस्तों राखी आ चुकी है निशिकंधा लेकर स्टूडियो में, छोड़े जाती हूँ आप सभी को उन्हीं के साथ। अपनी दोस्त रितिका को दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण परिस्थिति को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में उद्योग को शुरू करने और स्थापित करने पर ध्यान दिया गया, दूसरे चरण के अंतर्गत हमारी सभी रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए जरूरी चिप भारत में डिजाइन की जाएंगी। मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को मंजूरी दे दी है। भारत

0: ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। भारत टैक्स 2026 के दूसरे दिन राज्यों के नेतृत्व वाली वृद्धि, निवेश के अवसरों और वैश्विक बाजारों के साथ भारत की बढ़ती वस्त्र व्यापार साझेदारी पर बल दिया गया। इस सत्र में राज्य सरकारों, नीति निर्माताओं, उद्योग प्रतिनिधियों और व्यापार विशेषज्ञों को एक साथ लाया गया ताकि विनिर्माण को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और देश के वस्त्र तथा परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता में सुधार लाने के उपायों पर चर्चा की जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम MCD और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। NDDB मॉडल के तहत डेयरियों और गौशालाओं से गोबर को सीधे गैस और खाद संयंत्र तक पहुंचाया जाएगा। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन DIBD और पंजाब नेशनल बैंक PNB ने समावेशी बैंकिंग तथा नागरिक केंद्रित वित्तीय सेवाओं के लिए बहुभाषी AI समाधानों को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करने के वास्ते एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र देश में औद्योगिक रोजगार के सबसे तेजी से बढ़ते स्रोतों में से एक बनकर उभरा है। इस क्षेत्र ने लगभग 25 लाख रोजगार सृजित किए हैं, जो विनिर्माण आधारित आर्थिक विकास और आजीविका सृजन में इसके बढ़ते योगदान को दर्शाता है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में विधायी विभाग के विधि साहित्य प्रकाशन के EVSP पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री मेघवाल ने कानूनी क्षेत्र में सरल, सुगम और नागरिक अनुकूल हिंदी के प्रयोग की आवश्यकता पर बल दिया। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. Union Cabinet has approved the Semicon 2.0 with a budgetary outlay of 1,27,500 crore rupees to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw announced the cabinet decisions while briefing the media in New Delhi yesterday. Mr. Vaishnaw said, building on the momentum of Semicon 1.0, the scheme aims to further the government's commitment to putting India on the global semiconductor map.
2: Semicon 2.0.
3: Semicon 2 is built around 6 key pillars. The first pillar focuses on chip design. The second places major emphasis on semiconductor machinery and materials. The third aims to establish many new semiconductor fabrication units. The scheme also includes provisions to further strengthen the ATMP and OSAT industry, which has already gained momentum in India with 10 units already established.
2: Us industry ko aur aage badhane ke
1: The minister said the cabinet also cleared the mobile phone manufacturing scheme with a budgetary outlay of 62,500 crore rupees. The government also approved two elevated corridor projects at Varanasi in Uttar Pradesh to improve road connectivity and reduce congestion and travel time. The projects include a 6-lane greenfield elevated corridor covering over 46 kilometers between National Highway 19 and Varanasi Ring Road in Uttar Pradesh on the hybrid annuity model, improving urban mobility. External Affairs Minister Dr.

वक्त हुआ है 12:10 और ठीक 59 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा मैं हूं राखी आपके साथ

मधुमति फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया सलिल चौधरी ने। हिंदी फिल्मी गीत हमारे हर पल के सच्चे साथी हैं। खुशी का मौका हो तो ये मुस्कान बन जाते हैं और उदासी के लम्हों में दिल का सहारा। कभी बीते हुए दिनों की याद दिलाते हैं तो कभी आने वाले कल की उम्मीद जगाते हैं। हर एहसास, हर मौसम और हर रिश्ते के लिए जैसे कोई ना कोई गीत पहले से ही लिखा हुआ मिलता है। शायद यही वजह है कि हिंदी फिल्मी गीत सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि जिए जाते हैं।

आपकी कसम फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने कई बार जिंदगी की भागदौड़ में कहीं घूमने फिरने का समय ही नहीं मिल पाता ऐसे में हिंदी फिल्मी गीत ही हमें अपनी धुनों के सहारे हरी भरी वादियों बर्फ से ढके पहाड़ों बहती नदियों और सुहाने सफर की सैर करा लाते हैं कुछ पल के लिए ऐसा लगता है मानो हम भी उन खूबसूरत नजारों का हिस्सा बन गए हों यही तो फिल्मी गीतों का जादू है बिना कहीं जाए हमें दूर दूर की दुनिया की सैर करा देते हैं

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 12:31 और ठीक 15 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा मैं हूं राखी आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत

तीन देवियां फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया एस डी बर्मन ने कभी कभी तो यूं लगता है कि ये फिल्मी नगमे हमारी बेख्याली में भी हमारे साथ चलते रहते हैं होंठ खामोश हों फिर भी दिल की धड़कनों के साथ कोई धुन अनायास ही गुनगुनाने लगती है यही गीत हमारी तन्हाई के हमसफर मुस्कुराहट के राजदार और यादों के सबसे खूबसूरत साथी बन जाते हैं

कश्मीर की कली फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। एसएच बिहारी ने इसे लिखा और संगीत दिया ओपी नैयर ने। जिसे सच्चा प्रेम मिल गया और जो पूरे दिल से किसी का हो गया, उसके लिए यही दुनिया सबसे खूबसूरत हो जाती है। उसे दौलत, शोहरत या दुनिया की चकाचौंध से ज्यादा अपने प्रिय का साथ अनमोल लगता है। प्रेम जीवन को एक नया अर्थ, नई खुशी और अपनापन दे देता है। मानो पूरी दुनिया उसी की हो गई हो।

तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं। इस एक पंक्ति में ही प्रेम की गहराई समाई हुई है। जब दो लोग सचमुच एक दूसरे के हो जाते हैं तो उनकी खुशियां, उनके सपने, उनकी मंजिलें और उनकी उम्मीदें अलग नहीं रह जाती। सब कुछ एक ही रंग में रंग जाता है। यही कारण है कि ये गीत आज भी सुनने वालों के दिल को उसी आत्मीयता से छू जाता है जैसे इसने पहली बार छुआ होगा। गाइड फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने।

प्रार्थना फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने।

वक्त हुआ है 12:54 और ठीक 24 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी-बारी से समाचार समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम MCD और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि पिछले एक

0: दशक में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र देश में औद्योगिक रोजगार के सबसे तेजी से बढ़ते स्रोतों में से एक बनकर उभरा है। इस क्षेत्र ने लगभग 25 लाख रोजगार सृजित किए हैं, जो विनिर्माण आधारित आर्थिक विकास और आजीविका सृजन में इसके बढ़ते योगदान को दर्शाता है। मध्य प्रदेश में कल से पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा शुरू की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा से यही मानना रहा है कि आम आदमी भी हवाई यात्रा कर सके। राज्य की विमानन नीति इसी विचार पर आधारित है। निर्वाचन आयोग ने पंजाब में निर्धारित विशेष गहन पुनरीक्षण समय सीमा को 11 दिन तक बढ़ा दिया है। इस बदलाव के साथ अंतिम मतदाता सूची अब 12 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मिश्रा ने बताया कि घर घर जाकर गिनती की प्रक्रिया 3 अगस्त 2026 तक जारी रहेगी। मसौदा मतदाता सूची अब 13 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। अमेरिका ने होर्मुज जलडुब्रू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकेबंदी शुरू कर दी है। अमेरिका ने हवाई हमलों का अभियान तेज कर दिया। ईरान के अधिकारियों ने बताया कि सेना की बैरक पर अमेरिकी हमले में 7 सैनिक मारे गए। अमेरिकी हमलों से देश भर में 260 से ज्यादा लोग घायल हुए। ईरानी सरकार की प्रवक्ता फातेमेह मोहाजरानी ने कहा कि हाल के दिनों में अमेरिकी हमलों में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशिया ई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर भारत, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। कल तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में बिजली कड़कने के साथ आंधी तूफान का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय महवश फातिमा। Union Cabinet has approved the Semicon 2.0 with a budgetary outlay of 1,27,500 crore rupees to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw announced the cabinet decisions while briefing the media in New Delhi yesterday. Mr. Vaishnaw said, building on the momentum of Semicon 1.0, the scheme aims to further the government's commitment to putting India on the global semiconductor map. The minister said the cabinet also cleared the mobile phone manufacturing scheme with a budgetary outlay of 62,500 crore rupees.
2: आज जो कैबिनेट ने अप्रूव किया है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम।
3: टुडे कैबिनेट अप्रूव्ड द मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम विद एन टोटल आउटले ऑफ 62,500 करोड़ रुपीस ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स। द स्कीम प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ इंसेंटिव्स टू प्रमोट डोमेस्टिक सोर्सिंग एज इंडिया हैज नाउ डेवलप्ड अ स्ट्रांग मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम एंड मेनी मोबाइल फोन कंपोनेंट्स आर बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम द कंट्री। अंडर द स्कीम क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन वर्थ अराउंड 39 लाख करोड़ रुपीस इज एक्सपेक्टेड एंड अराउंड 60,000 न्यू डायरेक्ट jobs will be created.
2: 3,000 direct jobs may create.
1: The government also approved two elevated corridor projects at Varanasi in Uttar Pradesh to improve road connectivity and reduce congestion and travel time. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has expressed confidence that the India-EU Trade and Technology Council meeting will take forward the strong momentum of the partnership enabled by the India-EU FTA, Security and Defence Partnership and the Mobility Framework. Talking to media yesterday, after the third India-EU Trade and Technology Council meeting in Brussels, Dr. Jaishankar said India and the EU have a natural affinity. He added that India and the European Union have developed this trust with each other and now strive to take that into the business and technology domain. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal described the India-EU FTA as fair, equitable and balanced, which is a win-win agreement for every sector in both nations. Highlighting the discussions during the meeting, he said that they shared a vision for an innovation-driven, trusted and future-ready growth partnership. The Election Commission has extended the schedule for the ongoing Special Intensive Revision SIR of electoral rolls in Punjab, Karnataka, Telangana and Delhi. In Delhi and Karnataka, house-to-house visits by booth-level officers, BLOs, which were scheduled till the 29th of this month, will now continue till the 8th of next month. In Punjab and Telangana, the house-to-house visits will continue till 3rd of next month. Country's unemployment rate for persons aged 15 years and above remain unchanged at 5.5% in June as compared to May this year. According to the Ministry of State, United Arab Emirates, speaking on the occasion, the Chief Minister said, Prime Minister Narendra Modi has always believed that even a common man should be able to fly. Chief Minister said the government will place in the final against Spain on Sunday. In men's cricket, the second one-day international of the three-match series between India and hosts England will be played at Sophia Gardens in Cardiff today. The match will begin at 5:30 p.m. Indian time. And that is the end of this news bulletin.

वक्त हुआ है 1:10 और ठीक 59 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने मैं हूं राखी आपके साथ

पुनर्मिलन फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। इंदीवर ने इसे लिखा और संगीत दिया सी अर्जुन ने। कितने सुहाने हैं ये गीत, कभी चेहरे पर मुस्कान बिखेर देते हैं तो कभी अनकही यादों को धीरे से जगा देते हैं। कुछ गीत दिल को सुकून देते हैं, कुछ बीते लम्हों की खुशबू बनकर साथ चलते हैं। समय बदलता रहता है लेकिन अच्छे गीतों की मिठास कभी कम नहीं होती।

बड़ा आदमी फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में प्रेम धवन ने इसे लिखा और संगीत दिया चित्रगुप्त ने प्रेम इंसान को जितनी खुशियां देता है उतना ही संवेदनशील भी बना देता है जब दिल किसी से जुड़ जाता है तो दुनिया की बेरुखी ताने और ठोकरें पहले से कहीं ज्यादा महसूस होती हैं शायद अगर दिल ने कभी मोहब्बत का रास्ता चुना ही ना होता तो जिंदगी इतनी कठिन भी ना लगती लेकिन सच तो ये है कि दर्द का ये एहसास भी उसी दिल को नसीब होता है जिसने कभी सच्चे मन से किसी को चाहा हो

बाबर फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में, साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया रोशन ने। सच्चा प्रेम शब्दों से नहीं, समय, धैर्य और हर परिस्थिति में साथ निभाने से साबित होता है। इम्तिहान इसलिए नहीं कि किसी को मुश्किल में डाला जाए, बल्कि इसलिए कि रिश्ते की गहराई और दिल की सच्चाई सामने आ सके। मोहब्बत जब हर कसौटी पर खरी उतरती है

0: बरसात की रात फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया रोशन ने
1: मन की बात है जन जन की सभी की कुछ अपनी सी अनकही विरासत की उम्मीदें नए भारत की तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर तो याद रखें

वक्त हुआ है 1:29 और ठीक 28 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने मैं हूं राखी आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है

दिल ही तो है फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया रोशन ने। गीतों की यही तो सबसे बड़ी खूबसूरती है, वो दिल की सबसे छोटी से छोटी और सबसे गहरी से गहरी बात भी कितनी सहजता से कह जाते हैं। जिन भावनाओं को हम कभी शब्दों में नहीं ढाल पाते, उन्हें कोई गीत कुछ ही पंक्तियों में बयान कर देता है। कभी मुस्कान बनकर, कभी याद बनकर, तो कभी अनकहे दर्द की आवाज बनकर।

आखिरी दाव फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया मदन मोहन ने। गीत हमारी भावनाओं को ऐसा स्वर दे देते हैं कि लगता है जैसे वो हमारे ही दिल की कहानी सुना रहे हों।

भरोसा फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया रवि ने। कुछ रिश्ते समय के साथ पीछे छूट जाते हैं, लेकिन उनकी यादें दिल में इतनी गहराई से बसी होती हैं कि उन्हें मिटाने के लिए शायद एक नया दिल चाहिए। यही तो मोहब्बत की सबसे बड़ी विडंबना है। इंसान बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं, मगर कुछ यादें उम्र भर दिल का हिस्सा बनी रहती हैं।

अनोखी अदा फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश की आवाज में। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और संगीत दिया नौशाद ने।

वक्त हुआ है 1:46 और ठीक 23 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहानी मैं हूं राखी आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है

बैजू बाबरा फिल्म से आपने गाना सुना रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और संगीत दिया नौशाद ने। रहेगा मिलन हमारा तुम्हारा, जब तक धड़कनों में एहसास बाकी हैं तब तक इस साथ की खुशबू भी हमेशा बाकी रहेगी।

फूल का फूल फिल्म का गाना आपने सुना महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया एन दत्ता ने। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2:10 पर सुनिए समाचार। समाचारों के बाद माफ कीजिएगा, ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए से अधिक के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। भारत और ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम MCD और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र देश में औद्योगिक रोजगार के सबसे तेजी से बढ़ते स्रोतों में से एक बनकर उभरा है। इस क्षेत्र ने लगभग 25 लाख रोजगार सृजित किए हैं, जो विनिर्माण आधारित आर्थिक विकास और आजीविका सृजन में इसके बढ़ते योगदान को दर्शाता है। निर्वाचन आयोग ने पंजाब में निर्धारित विशेष गहन पुनरीक्षण समय सीमा को 11 दिनों तक बढ़ा दिया है। इस बदलाव के साथ अंतिम मतदाता सूची अब 12 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने बताया कि घर घर जाकर गिनती की प्रक्रिया 3 अगस्त 2026 तक जारी रहेगी। मसौदा मतदाता सूची अब 13 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। अमरीका ने होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की कोशिश करने वाले

0: जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकेबंदी लागू कर दी है। अमेरिका ने हवाई हमलों का अभियान तेज कर दिया। ईरान के अधिकारियों ने बताया कि सेना की बैरक पर अमेरिकी हमले में 7 सैनिक मारे गए। अमेरिकी हमलों से देश भर में 260 से ज्यादा लोग घायल हुए। ईरानी सरकार की प्रवक्ता फातेमेह मुहाजरानी ने कहा कि हाल के दिनों में अमेरिकी हमलों में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच दूसरा सेमीफाइनल मैच अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में चल रहा है। ताज़ा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने अर्जेंटीना पर 1-0 की बढ़त बनाई हुई है। इस रोमांचक मुकाबले में विश्व कप के इतिहास में समृद्ध दो देश आमने सामने हैं, जो 19 जुलाई को फाइनल में स्पेन के खिलाफ जगह बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। पुरुष क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंघम के एडजस्टन में खेले गए पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया था। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर भारत, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, रायलसीमा और उत्तर प्रदेश में आज मौसम गर्म और उमस भरा रहने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Mehwash Fatima. Union Cabinet has approved Semicon 2O with a budgetary outlay of 1,27,500 crore rupees to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav announced the cabinet decisions while briefing the media in New Delhi yesterday. He said, building on the momentum of Semicon 1O, the scheme reflects the government's commitment to establishing India as a global semiconductor hub. Mr. Vaishnav said, the cabinet has also approved the mobile phone manufacturing scheme with a budgetary outlay of 62,500 crore rupees.
2: आज जो कैबिनेट ने अप्रूव किया है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम,
3: टुडे कैबिनेट अप्रूव्ड द मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम विद एन टोटल आउटले ऑफ 62,500 करोड़ रुपीस ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years. द स्कीम प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ इंसेंटिव्स टू प्रमोट डोमेस्टिक सोर्सिंग एज इंडिया हैज नाउ डेवलप्ड अ स्ट्रांग मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम एंड मेनी मोबाइल फोन कंपोनेंट्स आर बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम द कंट्री. अंडर द स्कीम क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन वर्थ अराउंड 39 lakh crore rupees इज एक्सपेक्टेड एंड अराउंड 60,000 न्यू डायरेक्ट jobs will be created.
2: 60,000 direct jobs may create on.
1: The cabinet has also approved 2 elevated corridor projects in Varanasi, Uttar Pradesh to improve road connectivity, ease traffic congestion and reduce travel time.
4: Semicon 2
3: is built around 6 key pillars. The first pillar focuses on chip design. The second places major emphasis on semiconductor machinery and materials. The third aims to establish many new semiconductor fabrication units. The scheme also includes provisions to further strengthen the ATMP and OSAT industry, which has already gained momentum in India with 10 units already established.
4: Us industry ko aur aage badhane ke liye bhi isme pravdhan.
1: Comprehensive Economic and Trade Agreement CETA between India and the United Kingdom came into effect yesterday. Simultaneously, the agreement on social security known as the Double Contribution Convention also became operational, strengthening the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark agreement provides zero duty access to 99% of the Indian exports in the UK market, including textiles, leather, engineering goods, food processing products, pharmaceuticals and MSME sectors. On the first day of CETA implementation, Indian goods worth $140 million were exported to the United Kingdom. India and Belgium have agreed to deepen cooperation in areas including trade and investment, green energy transition, innovation and technology, connectivity, defence, security, regional and global issues, as well as people-to-people exchanges. The first meeting of the India-Belgium Strategic Dialogue was held yesterday in Brussels, marking a significant step towards strengthening bilateral relations through a more structured and comprehensive partnership. The inaugural session of the Strategic Dialogue was co-chaired by External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs, European Affairs and Development Corporation of Belgium, Maxime Prevot. The valedictory ceremony of the BRICS Trade Union Forum Summit 2026 was held yesterday in Hyderabad, with Telangana Governor Shiv Pratap Shukla attending as the chief guest. During the concluding session, the key summit declaration was formally approved and released. Addressing the gathering, Governor Shukla said, India is progressing rapidly, and highlighted Prime Minister Narendra Modi's mantra of Sabka Saath, Sabka Vikas as the foundation of new India's development. In FIFA World Cup, the second semi-final between defending champions Argentina and England is underway at Atlanta Stadium in the United States, with England leading 1-0. The first half ended goalless, but Anthony Gordon scored the opening goal for England in the 55th minute. The high-voltage encounter brings together two nations with a rich World Cup history as they battle for a place in the final against Spain on Sunday. In boxing, three Indian women boxers won gold medals, while 10 others bagged silver medals at the Asian Under 19 and Under 23 Boxing Championships in Jakarta yesterday. And that is the end of this news bulletin.

वक्त हुआ है 2:10 और ठीक 57 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई मैं हूं राखी आपके साथ

चोर फिल्म का गाना आपने सुना यशुदास और हेमलता की आवाज में। रविंद्र जैन ने इस गीत को लिखा और संगीत भी दिया रविंद्र जैन ने। रात सुहानी आपके सिरहाने बैठी है, जैसे कोई अपना चुपचाप आपके मन को सहला रहा हो। उसकी ठंडी हवाएं दिन भर की थकान समेटकर सुकून की चादर ओढ़ा रही है। इस शांत पल में बस अपने दिल की धड़कनों को सुनिए, क्योंकि कभी कभी खामोश रातें भी सबसे खूबसूरत बातें कह जाती हैं।

स्वामी फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में. अमित खन्ना ने इसे लिखा और संगीत दिया राजेश रोशन ने. चांदनी की कोमल छुअन, ठंडी हवाओं की सरगोशियां और तारों की मध्यम चमक मिलकर एक ऐसा संसार रच देती हैं जहां दिन भर की सारी थकान और उलझने धीरे धीरे कहीं खो जाती हैं. ऐसे पलों में पुराने फिल्मी गीत अनायास ही याद आने लगते हैं, मानो हर धुन रात की खामोशी में खुलकर दिल की अनकही भावनाओं को आवाज दे रही हो.

0: मंजिल फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में, योगेश ने इसे लिखा और संगीत दिया आडी बर्मन ने।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

वक्त हुआ है 2:28 और ठीक 16 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर रात सुरमई मैं हूं राखी आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है

चंबल की कसम फिल्म से आपने गाना सुना लता और रफी की आवाज में साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने ये सोच कर कि तेरा इंतजार लाजिम है ये सोच कर कि तेरा इंतजार लाजिम है तमाम उम्र घड़ी की तरफ नहीं देखा

उमराव जान फिल्म से आपने ये गजल सुनी आशा भोसले की आवाज में। शहरयार ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। जिसकी जस्तजू में उम्र की राहें बिता दी, उसे तो हम पा ना सके, मगर उसकी तलाश ने हमें इतना जरूर सिखा दिया कि हर ख्वाहिश का मुकम्मल होना ही जिंदगी नहीं होता, कुछ अधूरी आरजुएं भी दिल को उम्र भर जिंदा रखती हैं।

हुआ है 2:46 और ठीक 4 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर रात सुरमई मैं हूं राखी आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है

रजनीगंधा फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश की आवाज में। योगेश ने इसे लिखा और संगीत दिया सलील चौधरी ने। कई बार देखा है जब मन की सीमाएं टूटने लगती हैं तब शब्द खामोश हो जाते हैं और आंखें दिल की सारी कहानी कह देती हैं।

क्रांति फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज में। संतोष आनंद ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। वक्त हुआ है 2:57 और ठीक 20 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही फिरोज आलम के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

0: वसिया रेट।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
2: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
1: मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को भी स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम MCD और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इनका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र देश में औद्योगिक रोजगार के सबसे तेजी से बढ़ते स्रोतों में से एक बनकर उभरा है। इस क्षेत्र ने लगभग 25 लाख रोजगार सृजित किए हैं, जो विनिर्माण आधारित आर्थिक विकास और आजीविका सृजन में इसके बढ़ते योगदान को दर्शाते हैं। निर्वाचन आयोग ने पंजाब में निर्धारित विशेष गहन पुनरीक्षण समय सीमा को 11 दिन तक बढ़ा दिया है। इस बदलाव के साथ अंतिम मतदाता सूची अब 12 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। अमेरिका ने हॉर्मुज जल डमरू मथे से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकेबंदी लागू कर दी है। अमेरिका ने हवाई हमलों का अभियान तेज कर दिया। ईरान के अधिकारियों ने बताया कि सेना की बैरक पर अमेरिकी हमले में 7 सैनिक मारे गए। अमेरिकी हमलों से देश भर में 260 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरानी सरकार की प्रवक्ता फातिमेह मोहजरानी ने कहा कि हाल के दिनों में अमेरिकी हमलों में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। अब उसका मुकाबला 19 जुलाई को स्पेन से होगा। अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित समाप्त हुआ, लेकिन एंथनी गार्डन ने 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए पहला गोल दागा। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडीज ने 85वें मिनट में बराबरी का गोल किया और लोटेरो मार्टिनेज ने 90वें मिनट के बाद मिले अतिरिक्त समय के दूसरे मिनट में एक और गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से रोमांचक जीत दिलाई। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। अंडर 19 में चंद्रिका पुजारी ने 51 किलोग्राम वर्ग और प्राची ने 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जबकि अंडर 23 में निशा ने 54 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर भारत, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। कल तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में बिजली कड़कने के साथ आंधी तूफान का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: This is Akashvani, the news read by Mehbash Fatima. Union Cabinet has approved Semicon 2O with a budgetary outlay of 1,27,500 crore rupees to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw announced the cabinet decisions while briefing the media in New Delhi yesterday. He said, building on the momentum of Semicon 1O, the scheme reflects the government's commitment to establishing India as a global semiconductor hub.
2: Semicon 2.0.
3: Semicon 2 is built around six key pillars. The first pillar focuses on chip design. The second places major emphasis on semiconductor machinery and materials. The third aims to establish many new semiconductor fabrication units. The scheme also includes provisions to further strengthen the ATMP and OSAT industry, which has already gained momentum in India with 10 units already established.
2: Us industry ko aur aage badhane ke
0: Mr. Vaishnaw said the cabinet has also approved the mobile phone manufacturing scheme with a budgetary outlay of 62,500 crore rupees. The cabinet has also approved two elevated corridor projects in Varanasi, Uttar Pradesh to improve road connectivity, ease traffic congestion and reduce travel time. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has expressed confidence that the India-European Union Trade and Technology Council meeting will carry forward the strong momentum of the partnership enabled by the India-EU Free Trade Agreement, Security and Defence Partnership and the Mobility Framework. Speaking to media yesterday after the third India-EU Trade and Technology Council meeting in Brussels, Dr. Jaishankar said India and the European Union share a natural affinity.
4: As open societies and as market economies, India and the EU have a natural affinity. The rule of law and the sanctity of contracts are central to our thinking. When it comes to sensitive technologies, this is all the more important. The fact is that emerging technologies literally hold the potential to shape our lifestyle and future. India and the European Union have developed this trust with each other and now strive to take that into the business and technology domains.
0: Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal described the India-EU Free Trade Agreement as fair, equitable and balanced, saying it is a win-win agreement for all sectors in both nations. Union Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal has launched the EVSP portal of Vidhi Sahitya Prakashan of the Legislative Department in New Delhi. The portal aims to expand digital access to legal knowledge by making important judgments of the Supreme Court and High Court's legal journals, reference books and other legal literature in Hindi available online. Vice President C.P. Radhakrishnan has said that by exercising their right to vote, people reaffirm their faith in democracy. He called upon elected representatives to uphold this trust by serving with honesty, integrity and dedication. Addressing the conference of present and former members of the Rajasthan Legislative Assembly in Jaipur, organized to mark the 75th anniversary of the Rajasthan Legislative Assembly, Mr. Radhakrishnan said that state legislatures are the heartbeat of Indian democracy. Union Health Secretary Punya Salila Srivastav launched the Intermediate Field Epidemiology Training Program in New Delhi yesterday. The initiative through the National Centre for Disease Control aims to build a highly skilled field epidemiology workforce by training 250 state and district surveillance officers through 14 premier medical and public health institutions. In FIFA World Cup football, defending champions Argentina defeated England 2-1 in the second semi-final at Atlanta Stadium in USA to set up a title clash against Spain. The first half ended goalless, but Anthony Gordon scored the opening goal for England in the 55th minute. Argentina's Enzo Fernandez equalised in the 85th minute and Lautaro Martinez struck in the 90th plus second minute to complete a dramatic 2-1 comeback victory for Argentina. The final will be played on Sunday. And that is the end of this news bulletin.

अर्जुनी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 3:01 और 3:11 और 12 सेकेंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम हमराही का और हमराही की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूँ मैं यानी आपका अपना दोस्त फेरोज तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार पुरखलूस आदाब दोस्तों कहते हैं कि कभी कभी मोहब्बत किसी शोर से नहीं बल्कि एक खामोशी से शुरू होती है एक मुस्कान एक नजर और फिर दिल धीरे धीरे किसी का आशियाना बन जाता है आज की महफिल उसी बेपनाह एहसास के नाम जब दिल बिना किसी शर्त के बस इतना कह उठता है ओ सनम तेरे हो गए हम ये सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि उस इश्क की गवाही है जहां अपना वजूद भी किसी और की मुस्कान में नजर आने लगता है तो आइए अपने दिल के दरवाजे को खोलिए पुरानी यादों को हल्के से दस्तक देने की दीजिए और इस खूबसूरत नगमे के साथ मोहब्बत की उस रौनक को फिर से महसूस कीजिए फिल्म आई मिलन की बेला से अगजुनी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर मोहम्मद रफी साहब और लता जी की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में ये नगमा आपके लिए

ओ सनम तेरे हो गए हम, बेहद खूबसूरत ये नगमा फिल्म आई मिलन की बेला से आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और 100.1 मेगाहर्ट्ज पर महफिल है आपकी अपनी पसंदीदा हमराई की, जिसे लेकर हाजिर हूं मैं यानी आपका दोस्त। और अब हम आगे बढ़ेंगे एक और बेहद खूबसूरत नगमे की तरफ, जो आज का नगमा बहुत ही खूबसूरत बहुत ही प्यारा है, और यह हमें उस दौर में लेकर चल रहा है जब मोहब्बत लफ्जों से कम और नजरों से ज्यादा बयां होती थी, जब एक फूल और एक बुलबुल की कहानी दिलों में इश्क की खुशबू बिखेर जाया करती थी। साल था 1965 का और पर्दे पर आई एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म जब जब फूल खिले। इस फिल्म में अपनी मासूम अदाओं से दिल जीत लिया नंदा ने, और उनके साथ नजर आए थे सदाबहार अभिनेता शशि कपूर साहब। इस फिल्म का एक बेहद प्यारा गीत, जिसे अपनी रूहानी आवाज से अमर बनाया मोहम्मद रफी साहब ने, आज भी हर दिल को उसी शिद्दत से छू जाता है। तो आइए यादों की इस महफिल में शामिल होते हैं और सुनहरे दौर के उन बेहद खूबसूरत नगमे को हम आपको सुनवाते हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस गीत को लिखा है बहुत ही खूबसूरत गीतकार, बहुत ही प्यारे गीतकार आनंद बख्शी साहब ने, और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है कल्याण जी आनंद जी भाई ने। आवाजें हैं मोहम्मद रफी साहब और नंदा की।

मोहम्मद रफी साहब और लता जी की बेहद खूबसूरत आवाजों में यह नगमा था फिल्म जब जब फूल खिले से। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हमराही की इस दिलकश महफिल में मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फेरोज। और हमराही में आज आप और हम मिलकर चल रहे हैं एक बेहद खूबसूरत सफर पर, जिसमें गोल्डन एरा के उन रोमांटिक और बेहद खूबसूरत नगमों के साथ हम हाजिर में। आकाशवाणी दिल्ली का ये एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जिसमें हम अब आगे बढ़ेंगे एक और बहुत ही खूबसूरत नगमे की तरफ, जिसने सिर्फ पर्दे पर कहानी नहीं सुनाई बल्कि बदलते वक्त और इंसानी रिश्तों की कश्मकश को भी बड़े ही खूबसूरती से पेश किया। ये वो दौर था जब मोहब्बत, इमोशन और सामाजिक रिश्तों की बातें जब होती थी तो ऐसे लगता था कि जैसे फिल्मकार ने अपना दिल निकाल कर रख दिया है। ऐसी ही एक फिल्म थी नया दौर, और साल था 1957 का, यानी एक नया युग। नया दौर का मतलब नया युग की शुरुआत हो रही थी। महान फिल्मकार बी आर चोपड़ा के निर्देशन और निर्माण में बनी इस सामाजिक नाटक फिल्म की कहानी अख्तर मिर्जा ने लिखी थी। फिल्म में दिलीप कुमार और वैजयंती माला की जोड़ी ने अपनी शानदार अदाकारी से दर्शकों का दिल जीत लिया। उनके साथ थे अजीत जीवन, जॉनी वॉकर, चांद उस्मानी, नाजिर हुसैन, मनवान कृष्ण, लीला चटनीस, प्रतिमा देवी, डेजी ईरानी और राधा किशन जैसे उम्दा कलाकारों ने भी अपनी अदाकारी की गहरी छाप छोड़ी थी। इस फिल्म की कहानी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी थी और उसके नगमे भी इतने ही प्यारे थे। और उन्हीं नगमों में से एक बहुत ही खूबसूरत नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में। फिल्म नया दौर से आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। तो आइए सुनते हैं वही नगमा, साहिर लुधियानवी साहब ने लिखा है और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है ओपी नैयर साहब ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

लता जी और मुकेश साहब की बहुत ही प्यारी आवाजों में यह नगमा था फिल्म अनाड़ी से, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा हमराही की, जिसमें गोल्डन एरा के उन रोमांटिक और बेहद खूबसूरत नगमों के साथ हम हाजिर हैं और हम भी और आप भी मिलकर चल रहे हैं हमराही की इस बहुत ही खूबसूरत सफर पर आपके हमराही के साथ, जहाँ हर गीत अपने साथ यादों की महफिल, मोहब्बत की दास्तान और सुनहरे दौर की खुशबू लेकर आता है। कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते बल्कि एहसास बनकर दिल में उतर जाते हैं। उनकी मिठास, उनके अल्फाज और उनकी धुन बरसों बाद भी वैसी ही ताजगी का एहसास दिलाती हैं। आज का ये अगला नगमा भी कुछ ऐसा ही है। ये गीत है 1957 में आई एक बहुत ही मशहूर फिल्म प्यासा से, जिसने हिंदी सिनेमा को संवेदनशील कहानी और बेमिसाल संगीत का एक नया मुकाम दिया। इस खूबसूरत गीत को अपनी दिलकश आवाजों से सजाया है गीता दत्त और मोहम्मद रफी साहब ने। दोनों की गायकी में ऐसी नजाकत और रवानगी है कि हर मिसरा सीधे दिल तक पहुंच जाता है। और जब बात संगीत की हो तो सचिन देव बर्मन यानी एस डी बर्मन का जिक्र कैसे छूट सकता है। सचिन देव बर्मन एक ऐसी शख्सियत जिसने धुनों को जिया है। उनकी धुनों में सादगी भी है, रूहानियत भी, और ऐसा जादू भी जो हर दौर में ताज़ा महसूस होता है। तो आइए कुछ पल के लिए रोज़मर्रा की भाग दौड़ के ज़रा फुर्सत चुराते हैं और इस खूबसूरत नगमे के साथ मोहब्बत की इस दुनिया में खो जाते हैं, जहाँ खोई आँखों में दिल की ज़वान कुछ अलग ही कह उठती है। हालांकि ये वक्त बहुत ही सुकून वाला है, रात की इस तन्हाई में बेहद खूबसूरत गीतों के साथ, बेहद खूबसूरत नगमों के साथ हम हाजिर हैं आपके लिए खास तौर से इस नगमे को लेकर।

मोहम्मद रफी साहब और गीता दत्त की आवाजों में यह नगमा था फिल्म प्यासा से। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर महफिल है हमराही की, जहां हर गीत अपने साथ यादों की एक महफिल, सुरों की रौनक और जज्बात की एक खूबसूरत दास्तान लेकर आता है। कहते हैं मोहब्बत जितनी नाजुक होती है उसे संभालना भी उतना ही जरूरी होता है। रिश्तों की पाकिजगी, भरोसे की खुशबू और दिल की मासूमियत, इन्हीं एहसासात को बेहद खूबसूरती से बयां करता है हमारा अगला ये बहुत ही प्यारा नगमा। ये गीत है 1970 में रिलीज हुई एक यादगार फिल्म, जो एक बहुत ही खूबसूरत भी थी, सच्ची कहानियां कहती थी और हमारे जज्बात को भी झकझोर दी थी, और वो फिल्म थी मेरा नाम जोकर। इस फिल्म ने जिंदगी, मुस्कुराहट और दर्द को एक ही कैनवस पर बेहद संजीदगी से उकेरा है। गीत के दिलकश बोल लिखे हैं मशहूर शायर गीतकार हसरत जयपुरी साहब ने, और इस नगमे को अपने सदाबहार संगीत से सजाया है हिंदी सिनेमा की महान संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन साहब की, जिनकी धुनें आज भी दिलों में उसी रवानी के साथ गूंजती है। और जब इन गीतों को, इन अल्फाज को आवाज मिली मुकेश साहब और आशा जी की, तो फिर क्या कहने। ये गीत एक ऐसे ही नगमा निगारी का एक बहुत ही खूबसूरत नमूना है, जिसे सुनकर आज भी सुनने वाले मुकेश साहब की आवाज को याद करने लगते हैं, उनको याद करने लगते हैं, उनकी शख्सियत को याद करने लगते हैं। तो आइए सुनते हैं एक ऐसा ही बेहद खूबसूरत नगमा, जिसमें प्यार की मासूमियत भी है, अपनापन भी, और रिश्तों की हिफाजत का बहुत ही प्यारा एहसास भी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को भी स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम MCD और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र देश में औद्योगिक रोजगार के सबसे तेजी से बढ़ते स्रोतों में से एक बनकर उभरा है। इस क्षेत्र ने लगभग 25 लाख रोजगार सृजित किए हैं, जो विनिर्माण आधारित आर्थिक विकास और आजीविका सृजन में इसके बढ़ते योगदान को दर्शाता है। दिल्ली स्थित लाल किला परिसर 15 जुलाई से 15 अगस्त तक 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। लाल किला परिसर में स्वतंत्रता दिवस समारोह की चल रही तैयारियों के मद्देनजर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा ये आदेश जारी किया गया है। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस से पहले हर साल ऐसे आदेश जारी किए जाते हैं। 15 अगस्त को केवल सरकार द्वारा जारी पास धारकों को ही लाल किले परिसर में प्रवेश करने और समारोह में शामिल होने की अनुमति होगी। निर्वाचन आयोग ने पंजाब में निर्धारित विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सीमा को 11 दिनों तक बढ़ा दिया है। इस बदलाव के साथ अंतिम मतदाता सूची अब 12 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। अमेरिकी सेना ने ईरान पर फिर से हमले शुरू करने की घोषणा की है। सेना के केंद्रीय कमान ने बताया कि उसने दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाते हुए रात भर लगातार हमले किए और फिर दिन के उजाले में भी हमले जारी रहे। फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। अब फाइनल में 19 जुलाई रविवार को उसका सामना स्पेन से होगा। अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित समाप्त हुआ, लेकिन एंथनी गार्डन ने 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए पहला गोल दागा। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 85वें मिनट में बराबरी का गोल किया और लोटारो मार्टिनेज ने 90वें मिनट के बाद मिले अतिरिक्त समय के दूसरे मिनट में एक और गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से रोमांचक जीत दिलाई। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर भारत, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, रायलसीमा और उत्तर प्रदेश में आज मौसम गर्म और उमस भरा रहने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Mehvash Fatima. Union Cabinet has approved Semicon 2.0 with a budgetary outlay of 1,27,500 crore rupees to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav announced the Cabinet decisions while briefing the media in New Delhi yesterday. He said, building on the momentum of Semicon 1.0, the scheme reflects the government's commitment to establishing India as a global semiconductor hub. Mr. Vaishnav said the cabinet has also approved the mobile phone manufacturing scheme with a budgetary outlay of 62,500 crore rupees. The cabinet has also approved two elevated corridor projects in Varanasi, Uttar Pradesh to improve road connectivity, ease traffic congestion and reduce travel time. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has expressed confidence that the India-European Union Trade and Technology Council meeting will carry forward the strong momentum of the partnership enabled by the India-EU Free Trade Agreement, Security and Defence Partnership and the Mobility Framework. Speaking to media yesterday, after the third India-EU Trade and Technology Council meeting in Brussels, Dr. Jaishankar said India and the European Union share a natural affinity.
3: As open societies and as market economies, India and the EU have a natural affinity. The rule of law and the sanctity of contracts are central to our thinking. When it comes to sensitive technologies, this is all the more important. The fact is that emerging technologies literally hold the potential to shape our lifestyle and future. India and the European Union have developed this trust with each other and now strive to take that into the business and technology domains.
2: Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal described the India-EU Free Trade Agreement as fair, equitable and balanced, saying it is a win-win agreement for all sectors in both nations. Highlighting the discussions during the meeting, Mr. Goyal said both sides share a vision for an innovation-driven, trusted and future-ready growth partnership. India and Belgium have agreed to deepen cooperation in areas including trade and investment, green energy transition, innovation and technology, connectivity, defence, security, regional and global issues, as well as people-to-people exchanges. The first meeting of the India-Belgium Strategic Dialogue was held yesterday in Brussels, making it a significant step towards strengthening bilateral relations through a more structured and comprehensive partnership. The inaugural session of the strategic dialogue was co-chaired by External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs, European Affairs and Development Cooperation of Belgium, Maxime Prevot. Election Commission of India has extended the schedule for the ongoing Special Intensive Revision SIR of electoral rolls in Punjab, Karnataka, Telangana and Delhi. In Delhi and Karnataka, house-to-house visit by booth-level officers, BLOs, which were scheduled till the 29th of this month, will now continue till the 8th of next month. In Punjab and Telangana, the house-to-house visits will continue till 3rd of next month. Madhya Pradesh's first international flight service was launched yesterday. Chief Minister Dr. Mohan Yadav flagged off the first direct flight from Indore to Abu Dhabi, the capital of the United Arab Emirates. Speaking on the occasion, the Chief Minister said, Prime Minister Narendra Modi has always believed that even a common man should be able to fly. Chief Minister said the government is ready to provide 15 lakh rupees per flight as financial support for international routes. Delhi's iconic Red Fort complex has been closed to the public from yesterday until the 80th Independence Day celebrations on the 15th of next month, according to an official order. The order has been issued by the Archaeological Survey of India in view of the ongoing preparations for the Independence Day celebrations at the historic complex. In FIFA World Cup football, defending champions Argentina defeated England 2-1 in the second semi-final at Atlanta Stadium in USA to set up a title clash against Spain. The first half ended goalless, but Anthony Gordon scored the opening goal for England in the 55th minute. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 4:11 और 5 सेकंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम अरुणिमा का और अरुणिमा की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूं मैं यानी आपका दोस्त फेरोज तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और अरुणिमा की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में हम बात करेंगे जिंदगी के उन लम्हों की उन यादों की और उन खूबसूरत पलों की जो हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखता है बहुत ही मायने रखता है अगर वो पल अगर वो यादें ना हो तो हमारी जिंदगी बिल्कुल अधूरी लगेगी और इस अरुणिमा की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में हम बात करते हैं ऐसे लम्हों की जहां हर गीत सिर्फ सुरों का सफर नहीं बल्कि जिंदगी को समझने का एक खूबसूरत पैगाम भी होता है जिंदगी भी कितनी दिलचस्प है ना कभी धूप कभी छांव कभी आरजू तो कभी इंतजार लेकिन हर सुबह हमें एक नया मौका देती है मुस्कुराने का सीखने का और आगे बढ़ने का और रिश्ते भी कुछ ऐसे ही होते हैं उन्हें सिर्फ निभाया नहीं जाता बल्कि भरोसे अपनापन और मोहब्बत से सींचा जाता है जब दो दिल एक दूसरे की खुशियों में अपनी खुशी तलाशने लगे तब जिंदगी और भी खूबसूरत बन जाती है और आज का हमारा अगला नगमा भी कुछ ऐसा ही है मिलन सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि उम्मीदों का विश्वास का और दिलों का होता है यही तो जिंदगी की असली खूबसूरती है कि हर मुलाकात हमें कुछ नया सिखा जाती है इस अनमोल नगमे को अपनी जादुई आवाज से अमर बनाया है किशोर कुमार साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाजों ने आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अरुणिमा की इस महफिल में आपके अभिमान फिल्म का ये बहुत

अभिमान फिल्म का ये नगमा था किशोर कुमार साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम अरुणिमा, जहां हर गीत सिर्फ कानों तक नहीं बल्कि दिल की गहराइयों तक उतर जाता है। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है जब लगता है कि सब कुछ खामोश हो गया है, लेकिन यकीन मानिए हर खामोशी के बाद एक नई सदा जरूर सुनाई देती है। बस जरूरत है उम्मीद का दामन थामे रखने की। इंसान की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो हर मुश्किल के बाद फिर से मुस्कुराना सीख लेता है। रिश्ते, अपनापन और एक दूसरे का साथ, यही तो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। कभी किसी अपने को पुकारने में देर मत कीजिए, और अगर कोई आपको पुकारे तो उस आवाज में छिपे एहसास को जरूर समझिएगा। आज का हमारा अगला ये नगमा बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत, जो दिलों को जोड़ने की एक ऐसी ही प्यारी दास्तान कहता है। इस गीत को अपनी दिलकश आवाज से अमर बनाया है मोहम्मद रफी साहब और लता जी ने। गीत की खूबसूरत बोल लिखे हसरत जयपुरी साहब ने, जिनके अल्फाज सादगी में भी गहरी मोहब्बत का एहसास जगा देते हैं, और पर्दे पर इस गीत को जीवंत किया शमी कपूर साहब और कल्पना ने, जिनकी मासूम अदाकारी आज भी दिलों को छू जाती है। तो आइए आज अपने इस दिल

मुस्कान को अपनाएं और अपने आने वाले कल का इस्तकबाल करें, यकीन के साथ करें, क्योंकि जिंदगी की असली खूबसूरती मंजिल में नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए सफर को तय करने में है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखिए, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल अरुणिमा में। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 4:33 और 45 सेकेंड और अरुणिमा की इस महफिल में बातें जिंदगी से जुड़ी हुई बातें, आपके प्यार आपकी मोहब्बत की। दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी एक लंबा सफर है, इस सफर में कुछ लोग मिलते हैं, कुछ बिछड़ जाते हैं, कुछ लम्हे मुस्कान दे जाते हैं तो कुछ हमें मजबूत बनना सिखा जाते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, हर गुजरता हुआ पल हमें आगे बढ़ने की वजह देता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, पीछे रुकने की नहीं। अक्सर हम बीती हुई बातों को लेकर अफसोस करते रहते हैं, मगर जिंदगी का असली फलसफा यही है कि जो बीत गया उससे सीखिए और जो आगे आने वाला है उसका इस्तकबाल पूरे यकीन और मुस्कान के साथ कीजिए, क्योंकि उम्मीद से ही दुनिया भरी पड़ी है और उम्मीद से ही सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं। जिंदगी की किताब में एक नया और खूबसूरत सफ़ा ज़रूर जोड़ा करें, प्यार का, मोहब्बत का, खूबसूरती का। इन्हीं जज्बात को बेहद खूबसूरती से बयां करता है हमारा अगला ये बहुत ही प्यारा नगमा, जिसके बोल हैं, जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते। ये गीत फिल्म आपकी कसम का है, इसे बहुत ही खूबसूरती के साथ लिखा है आनंद बख्शी साहब ने और बहुत ही सुंदर संगीत से संवारा है राहुल देव बर्मन साहब ने। आवाज़ है किशोर कुमार साहब की।

जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। बेहद खूबसूरत ये नगमा था किशोर कुमार साहब की बहुत ही प्यारी आवाज में, फिल्म आपकी कसम से। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अरुणिमा की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में, और इस महफिल को लेकर हाजिर हूं मैं, यानी आपका दोस्त फिरोज। जिंदगी कभी इम्तिहान लेती है तो कभी मुस्कुराने की वजह भी देती है। हर मुश्किल अपने साथ एक नई सीख और हर आजमाइश एक नई ताकत लेकर आती है। आज का हमारा अगला ये नगमा हमें यही सिखाने की कोशिश कर रहा है कि जिंदगी में शिकवा नहीं बल्कि उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हर मोड़ पर कोई ना कोई हिकमत जरूर छुपी होती है। फिल्म मासूम का ये बेहद खूबसूरत नगमा तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, जिसे लिखा है गुलजार साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है आरडी बर्मन साहब ने। उनका संगीत दिल को छू लेने वाला संगीत और अनूप घोषाल की बहुत ही प्यारी आवाजों में ये नगमा। तो आइए बीती बातों को मुस्कुरा कर स्वीकार करें, आज को दिल से जिए और आने वाले कल का इस्तकबाल हंसते हुए मुस्कुराते हुए करें, इस नगमे की तरह।

तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं। बेहद खूबसूरत ये नगमा मासूम फिल्म से, आवाज थी अनूप घोषाल की। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। वक्त हो चुका है ठीक 4:49 और 49 सेकेंड। महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा अरुणिमा की, जिसमें हम बातें कर रहे हैं जिंदगी से जुड़ी हुई। और जिंदगी में उन तमाम मुश्किलात के बाद आप अपनी जिंदगी को किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं उसकी। कहते हैं वक्त चेहरों को बदल सकता है, लेकिन इंसान को नहीं, इंसान की खूबसूरती को नहीं। इंसान की रूह की खूबसूरती उसके अच्छे कर्म और मुस्कुराहट से पहचानी जाती है। जिंदगी में गुजरा हुआ कल लौट कर नहीं आता, मगर हर नया दिन हमें खुद को बेहतर बनाने का एक नया मौका जरूर देता है। इसलिए अफसोस में नहीं, बल्कि उम्मीद और हौसले के साथ आगे बढ़ने, इन्हीं गहरे एहसासात को बयां करता हुआ अगला एक बहुत ही प्यारा नगमा है, एक बहुत ही प्यारा कलाम है डैडी फिल्म का, जो सीधे दिल को छू लेता है। आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, गुजरा हुआ दौर जैसे कि मैंने पहले कहा कि कभी लौट कर नहीं आता, लेकिन उससे सीख कर जिंदगी को आगे जरूर बढ़ाई जा सकती है। इसके खूबसूरत बोल लिखे हैं सूरज सनीम ने, और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है राजेश रोशन साहब ने, और अपनी मखमली आवाज से इसे अमर बनाया है हम सबके प्यारे, हम सबके चहेते तलत अजीज साहब ने। तो आइए, आईने में सिर्फ चेहरा नहीं, अपने जज्बे और अपने सपनों को भी देखिए, क्योंकि असली खूबसूरती वही है जो दिल में बसती है, और आईना कभी झूठ नहीं बोलता।

से मेरी पहली सी सूरत मांगे। बेहद खूबसूरत और बहुत ही जज्बाती ये नगमा था फिल्म डैडी से, आवाज थी तलत अजीज साहब की। तो दोस्तों आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है हमें जरूर बताइएगा अपने पैगामात के जरिए, अपने संदेशों के जरिए। तरीका बहुत ही आसान है, आपको हमें मेल करना है और मेल करने के लिए हमारा ईमेल आईडी है fmgoldeirdaily@gmail.com fmgoldeirdaily@gmail.com। तो हमें आपके पैगामात, आपके संदेश, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। फिलहाल इसी नगमे के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए इजाजत आज की अरुणिमा को यहीं पर समाप्त करने की। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद एक बार फिर मैं आपके साथ रहूंगा लेकर बेहद खूबसूरत प्रोग्राम भोर सुहानी ठीक 5:10 पर। तब तक के लिए मुझे अब इजाजत दें, फिर होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में, और सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमियों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। भारत और बेल्जियम व्यापार तथा निवेश, हरित ऊर्जा, परिवर्तन, नवाचार और प्रौद्योगिकी, कनेक्टिविटी, रक्षा, सुरक्षा, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों के साथ साथ लोगों में परस्पर आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुए हैं। भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद की बैठक ब्रुसेल्स में आयोजित की गई, जो अधिक संरचित और व्यापक साझेदारी के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते, सुरक्षा तथा रक्षा साझेदारी और गतिशीलता ढांचे द्वारा समर्थित भागीदारी की मजबूत गति को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने ब्रसेल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के बाद ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ होराइजन यूरोप कार्यक्रम पर बातचीत शुरू करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि बैठक के दौरान वे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग अवसंरचना मानकों पर पहला नवाचार केंद्र स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। अमरीकी सेना ने ईरान पर फिर से हमले शुरू करने की घोषणा की है। सेना के केंद्रीय कमान ने बताया कि उसने दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाते हुए रात भर लगातार हमले किए और फिर दिन के उजाले में भी हमले जारी रखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम MCD और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। मध्य प्रदेश में पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का हमेशा से यही मानना रहा है कि आम आदमी भी हवाई यात्रा कर सके। राज्य की विमान नीति इसी विचार पर आधारित है। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। लाल किला परिसर में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के मद्देनजर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस से पहले हर साल ऐसे आदेश जारी किए जाते हैं। 15 अगस्त को केवल सरकार द्वारा जारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश करने और समारोह में शामिल होने की अनुमति होगी। खेलों में फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जहां 19 जुलाई को इसका सामना स्पेन से होगा। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is Akashvani, the news read by Mehbash Fatima. Union Cabinet has approved Semicon 2.0 with a budgetary outlay of 1,27,500 crore rupees to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav announced the cabinet decisions while briefing the media in New Delhi yesterday. He said, building on the momentum of Semicon 1.0, the scheme reflects the government's commitment to establishing India as a global semiconductor hub. Mr. Vaishnav said, the cabinet has also approved the mobile phone manufacturing scheme with a budgetary outlay of 62,500 crore rupees. The cabinet has also approved two elevated corridor projects in Varanasi, Uttar Pradesh to improve road connectivity, ease traffic congestion and reduce travel time. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has expressed confidence that the India-European Union Trade and Technology Council meeting will carry forward the strong momentum of the partnership enabled by the India-EU Free Trade Agreement, Security and Defence Partnership and the Mobility Framework. Speaking to media yesterday after the third India-EU Trade and Technology Council meeting in Brussels, Dr. Jaishankar said India and the European Union share a natural affinity.
2: As open societies and as market economies, India and the EU have a natural affinity. The rule of law and the sanctity of contracts are central to our thinking. When it comes to sensitive technologies, this is all the more important. The fact is that emerging technologies literally hold the potential to shape our lifestyle and future. India and the European Union have developed this trust with each other and now strive to take that into the business and technology domains.
0: Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal described the India-EU Free Trade Agreement as fair, equitable and balanced, saying it is a win-win agreement for all sectors in both nations. Election Commission of India has extended the schedule for the ongoing Special Intensive Revision SIR of electoral rolls in Punjab, Karnataka, Telangana and Delhi. In Delhi and Karnataka, house-to-house visits by booth-level officers, BLOs, which were scheduled till the 29th of this month, will now continue till the 8th of next month. In Punjab and Telangana, the house-to-house visits will continue till 3rd of next month. Delhi's iconic Red Fort complex has been closed to the public till the 80th Independence Day celebrations on August 15. An order in this regard has been issued by the Archaeological Survey of India, ASI, in view of the ongoing preparations for the Independence Day celebrations at the complex. A senior ASI official said that such orders are issued every year ahead of Independence Day. On August 15, only those with passes issued by the government are authorized to enter the Red Fort area to attend the celebrations which are held amid heightened security. The annual Rath Yatra of Lord Jagannath, Lord Balbhadra and Goddess Subhadra is being celebrated across Jharkhand today with traditional fervor and devotion. Religious rituals began early this morning at the historic Jagannathpur temple in Dhurwa, Ranchi. The Rath Yatra will commence for Mausi Badi at 5:01 p.m. The first international flight service from Madhya Pradesh has been launched. Chief Minister Dr. Mohan Yadav flagged off the first direct flight from Indore to Abu Dhabi, the capital of the United Arab Emirates. Speaking on the occasion, Chief Minister said that Prime Minister Narendra Modi had always believed that even a common man should be able to fly. The state's aviation policy has been built on this very idea. He said the government is ready to provide 15 lakh rupees per flight as financial support for international routes. This will help bring down ticket prices for passengers. In FIFA World Cup football, defending champions Argentina defeated England 2-1 in the second semi-final at Atlanta Stadium in USA to set up a title clash against Spain. The first half ended goalless, but Anthony Gordon scored the opening goal for England in the 55th time. Argentina's Enzo Fernandez equalized in the 55th minute and Lautaro Martinez struck in the 90th minute to complete a dramatic 2-1 comeback victory for Argentina. Now Argentina will play against Spain in the final of July 19. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक सुबह के 5:11 और 5 सेकंड और यह वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम भोर सुहानी का और भोर सुहानी की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूं मैं यानी आपका दोस्त फेरोज तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार पुरखलुस आदाब आज की इस नई सुबह में हम इस उम्मीद के साथ आज के इस सफर को आगे बढ़ाएंगे कि आज का दिन हमारे लिए बेहद खूबसूरत बहुत ही प्यारा हो इस उम्मीद के साथ कि हमारा आने वाला वक्त हमारे लिए हमेशा खुशियां लेकर के आए और हर कदम हम एक सही रास्ते पर सही तरीके से बढ़ाएं जिंदगी बेहद खूबसूरत है बहुत प्यारी है और उस जिंदगी को बहुत ही खूबसूरती से जिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा कीमती है और ये हमें बार बार नहीं मिलती हाँ ये ज़रूर है कि हर नया दिन हमें एक नई रोशनी एक नए सबक के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है तो आज हम भी एक नई सुबह में कदम रख चुके हैं एक नए दिन का आगाज़ कर चुके हैं और एक नए दिन की शुरुआत करने जा रहे हैं स्वागत है आपका भोर सुहानी में जहां हर नई सुबह अपने साथ उम्मीद की एक नई किरण और जिंदगी का एक नया पैगाम लेकर आती है दोस्तों सूरज कभी एक ही पल में नहीं निकलता वो भी धीरे धीरे आसमान को रोशन करता है और हमारे चारों तरफ उजाला फैलाता है ठीक वैसे ही जिंदगी में भी कामयाबी और खुशियां वक्त के साथ दस्तक देती हैं इसलिए सब्र रखिए यकीन बनाए रखिए और हर नए दिन का इस्तकबाल बहुत ही खूबसूरती के साथ मुस्कुरा कर कीजिए और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके इर्द गिर्द खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी हम भी इसी उम्मीद के साथ आज के इस नए दिन का आगाज़ करते हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर भोर सुहानी की इस दिलकश महफिल में देखिए ये परिंदे किस तरह से चहचहाने लगे हैं क्योंकि वो भी नए दिन का आगाज़ खुशियों के साथ मुस्कुरा कर करना जानते हैं

इस नई सुबह का एक बहुत ही खूबसूरती के साथ इस्तकबाल करें, एक संकल्प लें, हर दिन कुछ अच्छा सोचेंगे, कुछ अच्छा करेंगे और हर पल को दिल से जिएंगे। इसी उम्मीद के साथ हम भी इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर भोर सुहानी की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में